आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई सन 2026 दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये गोल्डन सिटी चैनल है और आपने ट्यून किया है एफएम बैंड 101.8 MHz पर। दोपहर के 12 बजे हैं, श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: इतना करो ना मुझे प्यार।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्यूआर कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
4: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: ऐ जिंदगी गले लगा दे, गले लगा दे, गले लगा दे, ओ गले लगा दे।
1: सारे गामा कारवां।

0: सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है।
1: आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में फिल्म गुलामी का ये गीत।

0: हर पलकों से गिर के शबनम हमारे आंखों में रुक गई है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है।
1: सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत या आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la
0: la la la la
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के साथ

0: अरे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
0: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: तो श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर।
1: जी।
0: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए।
0: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं। और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
0: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
0: जी।
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
0: तो श्रोताओ, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
0: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
1: जी।
0: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
1: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
0: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
0: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
1: जी।
0: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
0: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
0: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
1: जी।
0: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है, इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
0: जी।
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
0: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
0: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियां और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
3: अकर बकर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: बहुत अच्छी कहानी थी। भाई कौवे ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ चलो, पे पानी होगा। चलते
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है?
5: दीदी,
6: कौन है?
5: दीदी।
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, हाँ, बहुत ठंडा पानी था।
4: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
7: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो, मैं कौन हूँ?
5: कौन
7: नहीं समझे?
5: नहीं।
7: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
2: ऐसा मौसम
3: अब गर्मी अम्मा है।
4: अब बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
1: गर्मी अम्मा आप कब आती हैं? पता ही नहीं चलता।
4: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
4: हाँ
1: अम्मा मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
4: भाई मेरे मौसम में गर्मी ही तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो चलते हैं।
0: चलो।

0: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गई। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
2: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
0: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
1: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं? अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
2: मेरे ही मौसम का एक फल है। दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: नाम
2: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
3: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
3: कौन सा फल है?
1: कौन सा फल?
2: नहीं समझी?
1: नहीं।
2: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: तुम तो बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो।
1: हाँ बच्चो, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना।
3: अरे कोई खाने को दे तब ना।
1: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
3: लाओ अम्मा,
1: लो।
3: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
1: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
5: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
6: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
7: विजय श्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
6: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास

0: जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
1: What you heard right behind you was the sound of Bhopal's gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
2: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे ये कैसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में ही इतनी ठंड है, तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: हाँ, कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
3: हाँ।
2: लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: हाँ, हाँ। पहनावे से तो कोई कबायली लगता है।
2: हाँ।
3: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
2: हाँ।
3: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: हाँ, आने
4: दो, आने दो। ए, तुम रुको, रुको, जाओ वहीं रुक जाओ, रुको।
5: कौन हो तुम?
6: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
5: क्या सूचना?
6: साहब साहब दुश्मनों के बारे में।
5: अच्छा, यहीं रुको, चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
6: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
6: सर हम एक चरवाया है।
0: आगे बताओ।
6: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
6: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
0: क्या?
6: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ।
0: कितने लोग रहे होंगे?
6: सब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
0: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
6: साहब मेरा गाँव है घर कौन, ये कारगिल शहर।

0: शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
1: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
2: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
1: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्को, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
2: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
1: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
2: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
1: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
2: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
3: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
4: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
3: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
5: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
3: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
6: जी यस सर।
3: ये मेज के चारों।
4: जी सर।
3: उधर से। हाँ जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
4: जी सर।
3: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
4: जी सर।
3: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
4: जी सर।
3: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दक्षिणी ओर से।
4: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाई ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
3: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
7: यस सर,
3: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे। तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
4: जी जी सर।
3: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
4: सर, सर, सर,
3: कोई शक?
4: नो सर।
3: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
6: यस सर।

0: अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
1: धीमे बोलो, धीमे
0: जी,
1: उन्हें पता ना चल जाए। जी सर। चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे
0: जी,
1: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
0: ठीक सर।
1: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक घात गोला फेंकना।
0: जी सर।
1: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
0: जी सर।
1: ठीक है, आगे बढ़ो, बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी जैसे।
0: ओके,
1: धीरे। बस अब हम चोटी पर आ गए हैं, तो अब रेंगना शुरू कर।
0: रेंगेंगे
1: जी सर, कोई भी उठकर नहीं जाएगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
0: हाँ सर।
1: एवरीबॉडी रेडी?
0: यस सर।
1: यस सर। अब हाथ गोला फेंको।
2: गुड, वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।
3: फायर!

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्को, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और श्रोताओं अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग।
3: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का, जैसलमेर केंद्रीय है। FM बैंड 101.8 MHz पर प्रस्तुत है हिंदी में प्रादेशिक समाचार। इन समाचार को हम जयपुर के आकाशवाणी केंद्र से रिले करेंगे।
4: से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा में आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के दौरे को लेकर प्रवासी भारतीय के साथ स्थानीय इटालियन कारोबारियों में उत्साह है। वे भारत में व्यावसायिक अवसरों पर चर्चा के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक ली। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान राजस्थान को कोयले की निर्बाध आपूर्ति, तकनीक आधारित खनन और खनिजों के बेहतर दोहन सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने कल राजसमंद जिले के राजपुरा दरीबा में हिंदुस्तान जिंक संयंत्र का जायजा लिया। उन्होंने राजस्थान में प्रौद्योगिकी आधारित भूमिगत खनन, एकीकृत धातु गलाने की प्रक्रियाओं और सामुदायिक विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जिंक का परिचालन विकसित भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। 11 लाख टन से अधिक परिष्कृत उत्पादन क्षमता के साथ ये संयंत्र आत्मनिर्भर औद्योगिक इकोसिस्टम का उदाहरण पेश करता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। इधर राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 108.94 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है, वहीं डीजल 94.17 रुपए प्रति लीटर हो गया है। बढ़ी हुई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई। ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद ये बढ़ोतरी की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से लावारिस श्वानों को हटाने के अपने पहले के आदेश में किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग करने वाली याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। अदालत ने अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के निर्देश दिए। अस्पतालों, स्कूलों और अन्य स्थानों पर कुत्तों के हमलों की घटनाओं को बेहद चिंताजनक बताया गया है। इनका हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने, रेबीज रोधी टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और रेबीज से संक्रमित या खतरनाक कुत्तों की इच्छा मृत्यु सहित कानूनी रूप से अनुमत उपाय करने के भी निर्देश दिए। जयपुर विकास प्राधिकरण ने पारदर्शिता की पहल को आगे बढ़ाते हुए भूमि आवंटन का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि साल 2014 से 2026 तक जमीन के बदले जमीन से संबंधित मामलों में आवंटित भूमि का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इस जानकारी में संबंधित जोन, योजना का नाम, भूखंड संख्या और आकार सहित अन्य जरूरी ब्यौरा शामिल किया गया है, जिससे आम लोगों और संबंधित पक्ष को किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रहे और आसानी से समुचित जानकारी मिल सके। ये पहल प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में अहम मानी जा रही है। प्रदेश में ईंधन बचत मुहिम के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले की चिड़ावा नगर पालिका में अनुकरणीय पहल देखने को मिल रही है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सहित सभी कार्मिक साइकिल से दफ्तर पहुंचकर ईंधन बचत का संदेश दे रही हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉयंट से होगा। ये मैच जयपुर के SMS स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आईपीएल मैच को देखते हुए जयपुर में यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। कई मार्गों पर यातायात डायवर्ट रहेगा। उधर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। वहीं मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉयंट्स मुकाबले से बाहर है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये गोल्डन सिटी चैनल है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम पणिहारी।

है। और अगर पछे उमे लोक गीत हुए तो उए सुतो अपरे उएरो मजो और ही दुगनो हुए जावे। तो बहनों लिए अलसो गीत संगीत री दुनिया में ये प्यारे से लोक गीत रे साथ।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: क्यूआर कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। विकसित
1: बहनों करियो मनोरंजन ये प्यारे से लोकगीत के साथ और साथ ही साथ सुनिया जरूरी संदेश भी। तो बहनों आप देखो है कि आप जब घरे सब जना बैठ के कोई काम काज करो और जब तुम्हें पारंगत हो जाओ तो आप उरे वास्ते आप रे गली मोहल्ले शुरू करके और उन्हें धीरे धीरे काम न बढ़ाए कि आप उन्हें ही कुटीर उद्योग रूपी रूप दे सको। और आप गांव गुवाड़ में तो आप देखो बहनों के आजकल काफ़ी सारी जिको है संस्थाओं हैं जिको ट्रेनिंग देवी सरकार भी जिको है ट्रेनिंग देवी और वे सो आप जिके क्षेत्र में जिके में अपन रुचि है आप वे रे मैं कशीदाकारी में अगर अपन रुचि है तो आप कशीदाकारी रो कोर्स सीख सको वे में आप रो जिको है कैरियर बनाए सको कोई ना हुए कि ना मानो तो जिको है बिस्किट और बाजरे रहा आजकल भी बहुत ज़्यादा चली तो वो बनाना है तो वो बना ही सको आजकल जिको ऊपर है घर परिवार से जरूरी है और आप घरे बैठ के जिको काम कर सको सिलाई कढ़ाई है कुछ नयो काम करन की इच्छा है तो हमें काफ़ी सारी संस्थाओं है जिको अपनो सिखावे भी है और वेरे वास्ते अपनो लोन भी देवे तो वह मैं उज कड़ी रे मोए आज अपरो कार्यक्रम है अन्नपूर्णा जिको कि स्वयं सहायता समूह मत है आधारित कार्यक्रम है और ये रे तहत भी जिको है स्वयं सहायता समूह से जिको बहनों जरूरी है वो आप रे बारे में जानकारी देवे तो आज ये स्वयं सहायता समूह मत है आप पार्वती जी से बातचीत कर से तृप्ति भाटिया री खास बातचीत और जिको है पार्वती जी है वो गांव डेढ़ा जिला जैसलमेर पंचायत डेढ़ा री हैं और यो रे समूह रो जिको नाम है वो नव डूंगर राय समूह है और ये समूह रे माए है अध्यक्ष रे पद मत है कार्यरत है और यो रो जिको ग्राम संगठन है वे रे नाम री सोच और वे में अध्यक्ष रे पद रे मत है SELF है और नया सवेरा रेमोय भी है सचिव रे पद मत है कार्यरत है। तो देखो ए आप रे गांव गुवाड़ में आप रे घर सु बैठ के भी कितना सारा काम करे तो यो सु खास बातचीत और ये मत है जिको है कार्यक्रम अन्नपूर्णा सुनवा सो बहनों
2: नमस्कार बहनों आज रे अन्नपूर्णा कार्यक्रम में वादे रे मुताबिक हूँ तृप्ति भाटिया हाजिर हूँ और मिलवाऊ अस्थो ने एक और एडी

0: सखीसों जुको आपरे क्षेत्र में ताजी विकास जुड़ के महिलाओं वास्ते आपरे वास्ते और आपो सबरे वास्ते एक मिसाल रुको की मेरा नाम है पार्वती जी और है डेडा गौसो। नमस्कार पार्वती जी।
1: नमस्कार
0: जी। तो पार्वती जी सबसे पहले तो थे आपरे बारे में बताओ कि भी डेडा गौ है ई में जो किता परिवार है और थे ये राज्य विकास कद तक जुड़िया और जुड़न से पहले थोड़ो जीवन के एड़ो होतो और की एड़ो मोड आयो कि थे ये सब चीजों से जुड़िया। जी
1: मारू परिवार 150-200 व्यक्ति है डेडा गांव में
0: जी। और थे राज्य विकास को कर जुड़िया?
1: मैं राज्य विकास नहीं समूह से जुड़ी हुई हूँ।
0: हाँ
1: मेरे समूह का नाम है नम्र उमर आए
0: जी।
1: समूह में मैं एक अध्यक्ष के पद पे हूँ।
0: आप अध्यक्ष के पद पे हैं? अच्छा
1: जी। अध्यक्ष के पद
0: जी।
1: और समूह में तो कोई बहन नहीं आई थी वो एक समूह बनाना है
0: जी।
1: तो मैं समूह में भी कारण जुड़िया हूँ।
0: तो समूह में कितना लोग गई जो थे एकला अध्यक्ष होने से तो जरूर और भी लोगों से
1: एक समूह में ना 10 महिलाओं जरूर है।
0: अच्छा तो ये में थोड़ा कॉम की गई
1: कॉम फिर तो कई मोन समूह बढ़ाया और मैंने मान सो तो मुझे कहीं कॉम बता दी तू
0: जी।
1: इन समूह बढ़ायो समूह बाद में वही ग्राम संगठन बनायो।
0: अरे वाह
1: ग्राम संगठन के बाद में सेल बनी हुई।
0: अच्छा
1: तो हमें तो समूह को बढ़िया चल रही पड़ी हो
0: जी। तो थे ये जो समूह से जुड़िया नहीं तो उसे तो पहले थे की काम करता था?
1: पहले मैं कई काम को करता घर में काम करता घर में ही रहता और महिलाओं थोड़े बाहर कम जाया करे थोड़े
0: जी जी। जैसलमेर से कितना अगो है डेटा को?
1: जैसलमेर तो है 20-22 किलोमीटर है।
0: तो थोड़ा लगता उसे नहीं कदे कदे कि भाई अगर मैं शहर में रहता हूँ तो मैं बहुत कुछ कर लेवन ऐ तो मैं गांव में हूँ तो मैं की करी को नहीं सकते लेकिन जी
1: मैं जानी हूँ तो कि मैं कोई काम को करा को गौर महिलाओं गौ भी रहे वो समूह में जुड़ने हम हमें बहुत फायदे हुए हुए कि समूह में जब जुड़े हो जब भी थोड़े बाहर निकले हो पहले तुम्हें गौ में थोड़े निकले हो
0: जी।
1: अब गाँव गाँव करे थोड़े सिटी तक आवन लागे थोड़े कहीं जॉन पहचान तो मई समूह में की गो मैं की गो करे बाहर निकलू मई
0: तो हमें कैडो लगे थोड़ा जीवन में जो परिवर्तन आयो हमें थोड़ा कैडो लगे
1: मुझे बहुत बढ़िया लग रही समूह जो बहुत बढ़िया है तेल तो मुझे नाम पार्वती है
0: जी।
1: मत गौ डेटा है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल
1: पंचायत डेटा जिला जैसलमेर
0: जी। तो पार्वती जी और शिक्षा दीक्षा कितनी है जो पढ़ा लिखा कितना होती
1: है? पढ़ा लिखा को वही तो बात है वही तो टेंशन करी पहले तो मैं पढ़ा लिखा को निकी करा
0: पर देखो पार्वती जी बहुत बढ़िया बात है ए थोड़ी जो मेरी श्रोता बहनों और साथी सुने प्यानी उम्र वास्ते प्रेरणा की बात है कि बिना पढ़े लिखे भी आज थे आप रे गांव में ग्राम संगठन में काम करो पिया और थे समूह अध्यक्ष भी हो तो बताओ जो महिलाओं थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी है वो भी की वो की कर क्यों कुन सके है नहीं?
1: पहले तो टेंशन नहीं थी भाई पढ़े लिखे को नहीं मैं की काम करा वो एक समूह में जुड़ना मनो नयो जीवन मिलियो है कि मैं एक समूह में जड़े जुड़िया हूँ समूह में अध्यक्ष के पद पे हूँ ग्राम संगठन में मैं अध्यक्ष के पद पे हूँ और ग्राम संगठन में मैं सीएलएफ में जुड़ी हूँ तब वहाँ सचिव के पद पे हूँ।
0: सचिव के पद पे आप तो अब आपके परिवार को कैसा लगता है जैसे परिवार के लोग है ना?
1: हाँ उनको बढ़िया लागो उम्र काल में कर तू ग्राम संगठन में जुड़ी हो फिर तो परिवार और सहमति लेनी हो तो उन्होंने लागो कह भाई आपको काम करे तो बढ़िया ही काम
0: जी बढ़िया लगे थोड़े बारे में जोड़ के तो हाँ। पार्वती जी मैं बताओ कि थोड़ा समूह है नी फिर मुख्य कार्य की होया करे?
1: मुख्य कार्य है मैं छोटी छोटी बचत करी 20 रुपया बचत करी पहले तो मैं बचत बड़ी करनी पड़ी हुई ना
0: जी जी
1: 20 रुपया
0: हाँ अरे वाह बहुत
1: समूह बढ़िया चला हाँ तो मारो तुम आगे बढ़े
0: और 20 रुपया पार्वती जी बहुत छोटी रकम है आजकल बच्चा भी खर्च कर दीजिए उन्हों भेड़ो कर दे तो इस तो बढ़िया काम हो सके
1: जी। 20 रुपये बचत हो समूह बनायो समूह 2021 में बनायो।
0: अच्छा
1: 6 साल हो या 6 साल हो या मेहनत करो बड़ा मन कोई लोग भी कई गर की कारण करो की बचत हुई मन बड़ी।

0: कारण भी समूह चला हुआ।
1: बिल्कुल, तो थोड़े समूह देखो राज्य विकास को काफी लुगाया हमारे बातचीत महोत्सव करी है, कोई पशुपालन से जुड़ोड़ हो गई, कोई खेती रे कॉम से जुड़ोड़ हो गई है नी, और की कॉम है
0: किसी जगह भी हो किसी में जुड़ी हुई
1: हो। अच्छा, तो उनसे भी जुड़ोड़ा हो, अरे वाह,
0: किसी में भी जुड़ी हुई यही बारे में कोई मैं तो समूह भी को हमें से आई है कोई बात की बात तो बनाना तो मैं हमें से को देख समूह की चीज है तो मानो बस महिलाओं ने बिट्टी टेकर और समूह बढ़ाए तो माँ होती के बड़ो तो रहे जो ही हो तो घर को भी कहा समूह भी चला तो घर को भी करी मोर समूह भी चला तो मोर समूह भी जीत जीती है मेरा बारह महीने मोर थोड़ी बचत लागी के मोर इतनी बचत हुई है तो फिर तीन साल में उठती है मोरा जब बचत होया तो मोन लागू अपनी बचत से काफी भी खावे तो भी बचत कर सको।
1: सही बात है और जी, तो हमें थोड़े एक तो कम कृषि रो है पूरे अलावा थोड़े समूह रो कई चीज रो कम है
0: कोई अलावा नो ये में तो रामचंद्र में बता भी कर भी जुड़े
1: हाँ और तो जो कुछ लोग सिलाई कढ़ाई रो कम करे ग्रुप का कुछ बाजरी और बिस्किट बीजा बनावे कोई साबुन बनावे तो थोड़ी लुगाई मिलने की चीज बनावे।
0: आज जो ये सब गांव में ना वो पहुंच कर तू भी कोई भी आई थी जा दो तुम्हें लेवन ना तैयार हो आगे वो नौ बजे दिन में डूए के देख कोई भी काम करा हो तुम्हें करना तैयार।
1: अच्छा, तो लोग तैयार कर दियो है और जो जो भी थोनो काम सिखाया जाते वो ते करण में इच्छुक हो
0: तैयार हमें गांव में कोई भी काम करा है राज्य कर बारे में तो मैं तैयार हूं और गांव में ना समूह पूरा है और देखभाल करना मैं तैयार देते हूं कि ना ले फंड देना बनावे वापस जमा करावना है तो इस बात पे मैं तैयार हूं
1: जी। और कृषि से की है ऐ जो तो बात करी क्यों कृषि से की हो ऐ कृषि से की रुकी कौन भी और की चीज रहा करे
0: कृषि से की खेतों के बारे में जानकारी।
1: अच्छा,
0: फसलों के बारे में कोई फसल में कोई दवाई भी छिड़काव वगैरह करना है तो।
1: अच्छा, और जनरली की वे जी
0: है
1: जो आपको मनक हुई नहीं वो घना खेती बाड़ी को ध्यान रखे पर हमें तो कृषि सकी हो तो मन लगे तो आस पास रहा लोग एक बहनो है बहुत तो सलाह मशवरा करता होते कि भाई को बता है नहीं
0: पहले तो खुद करी तू इसी जगह है घर में वाटिका वगैरह लगानी है कोई सब्जी वगैरह लगानी पहले तो मन लगानी पड़े तो गांव लगाई देखी मन लगू लगाई तो वही जगह है नहीं तो उसको लगाओ।
1: सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
0: पहले गांव में हुई काम करा हुई है अपने खेती का काम करना है घर आगे वाटिका लगाना है कोई पौधा लगाना है ओके तू क्यों करे तो मुझे सिर्फ जरूरी हो अभी समूह में हूँ जेड जो करी तो भे आगे करूँ और साइमा ने कोई कि भाई समूह बढ़िया चीज है सहेंगे महिला को हारियो ने कोई के बढ़िया फॉर्म है समूह महिला जुड़े रहो अपने हाथ में मेहनत है ना कोनो काम करनो
1: जी। तो जैसलमेर भी थाना मीटिंग हो विजय आवणो पड़ेगी रे वास्ते
0: जैसलमेर में तेल फ्री में इसी रियो मीटिंग होवे एक महीने में दो मीटिंग होवे।
1: अच्छा,
0: मीटिंग में इसी रियो और तेल फ्री में
1: और वो लोग खुद भी आया करी थोड़े गांव में बाहर से लोग जो आता रहे मिलता रहे समूह रा लोग जो जो लोग समूह से जोड़ियो ही नहीं वो लोगों ने खुदरो भी आवनो जावनो लगोड़ो रहे कैसी
0: रजिस्टर
1: जो डेटा गांव है तो कदे थे जैसलमेर आवे कदे वो लोग गांव आवे है नहीं।
0: हां वो गांव आवे मां समूह देख बाल भी करण ना आवे।
1: सही बात है, तो कि तो अच्छो लगे कि आप ऐ समझ जी कि लुगाई रो काम कि बियां रे बाद देखो बियां पहले तो बड़े छोरियो कोई की करे कोई की करे कि बियां रे बाद की लगे कि आप जीवन बिल्कुल सीमित हो गए लेकिन जब आप जीवन में नई चीजों आवे तो आप नई खुशियां मिले
0: नई खुशी आवे या नई काम करो तो मैं उन खुद समूह में जुड़ी हो मोर ये सब अच्छा काम करे कोई भी आप अलग गौरी कोई मना मिले नहीं तो कोई भी मना पूछ ले भाई आप समूह में जुड़ो रहा हूँ काम समूह में जुड़ो रहा हूँ
1: और जैसे मीटिंगों में जाता हूँ तो जब भी पर बहुत अलग अलग गौरी लुगाई मिलती है उसे।
0: हाँ, अलग अलग गौरी लुगाई मिले हर गौरी आई थी अलग थी मीटिंग में
1: जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है कि थो एक तो खुद नो आगे ले गया और जिको थोड़े मन में पहले विचार हो तो कि भाई पढ़ी लिखी को नहीं हो तो की कर कौन सको लेकिन ये तो ठा पड़े कि जिके इंसान नो करनो भी वो तो कॉकर भी कर ले दे।
0: हाँ, करनो है मन में मुझे पढ़ी लिखी बोलिया नहीं हमें समूह में जो आगे बढ़ो और समूह नाम रोशन कर
1: जी। बिल्कुल, थोड़े माता पिता या पीहर पीरे पास वाला लोग कित रहे
0: पीर लोड़े लगाओ
1: लौड़े लगो तो उड़ा भी तो सब राज्य विकास चली नहीं समूह बीजा उड़ा भी चले तो थोड़े माता पिता ने भी अच्छो लगते हो जो तुम भी गाँव जाओ था उसे
0: माता पिता ना गाँव वालों ना अड़ोस पड़ोस ना थोड़ी पढ़ी लिखी कम है मगर मेहनत जरूर कर।

0: नहीं दोनों तो कुछ देखो पार्वती जी दोनों थोड़े परिवार देखो साथ मिल गए नहीं, पर जरूर कुछ लुगाई मिलने की थोड़ा आइडिया की मिली उनसे जो कुछ चाहती हूँ उसे आगे आवनो, पर मेरे परिवार मनु मना कर तू उसे धनी बीजा
1: हाँ
0: ठीक ही कर सो ऐसा करना कु नहीं करना घरा काम करो है नहीं
1: हाँ ना घर कौन भी कराई हाँ तो मुंह भी चलाओ
0: तो एडियो लुगायो नो या मेरे हस्बैंड नो या मेरे परिवार नो से आप और रेडियो के माध्यम से की संदेश देना चाहोगे कि भाई काम करने में को मेहनत थोड़ी है
1: नहीं कौन कर लो आप और आप है तो मेहनत कर हो आगे बढ़ो हम जब मेहनत कर हो तो ही आगे बढ़ो गरीब छोड़ा आगे बढ़ो वो
0: जी। और कुछ लुगाई ने भी चीज लगती है उनसे जो मौसम से कुछ लुगाई बात करी नहीं वो कहे कि भगवान जोने केड़ा बार ला लोग है आजकल तो हर जगह बदमाश हो चले कौन शहर से आवे मेरी बातों में विश्वास नहीं कर जे
1: हाँ
0: तो
1: विश्वास
0: लोगों
1: तो करे इस भी रुपए के एक बैकी कारण जैसलमेर जाओ एक और समूह है के में जरूरे समूह में मैं जब जुड़ हूँ नहीं आगे जा हूँ नहीं तो जीवन पड़े समूह केड़ू है समूह बढ़िया है समूह महिला और ये बहुत अच्छा है हम साथ ला कर सभी मिलू भाई ना कोई कि भाई आप समूह में जुड़े रहो और आगे बढ़ो।
0: और थोड़े बच्चा भी चाहे
1: हाँ लड़को लड़की है
0: अच्छा तो जरूर वो भी आपके दोस्तों में जानता हो तो उन्हें लगे तो उसे नहीं कि भी मौरी मम्मी जो की अहमियत है आज मौरी मम्मी अध्यक्ष है तो उन्हें बहुत गर्व हो तो उसे
1: गर्व तो है मन खुद सपनों ही नहीं के गर्व के पढ़ी लिखी को नहीं तो ग्राम संगठन माता एडजस्ट की कारण बनी है थोड़ी देर में बढ़िया पढ़ी के दो आगे ग्राम संगठन भी चलाई और समूह के भी हूँ अध्यक्ष के पद पे और किसी तक की भी जुड़ी हुई है बहुत अच्छी लगी समूह बहुत बढ़िया है भाई और लिए बहुत बढ़िया है समूह जब आप बचत कर हाँ मेहनत कर हाँ तो आपको आगे बढ़ हाँ नहीं तो घर में इधर बैठा रहे हो तो कहीं कौन हो जाएंगे क्या आपको एक तो गाँव रहा अपन और काम करना पड़े मेहनत करनी पड़े
0: गौर लोग वैसे मेहनती तो वही है अगर उन्हें सही दिशा मिल जावे तो उम्र लाइफ में और भी ज्यादा परिवर्तन आ जावे
1: बहुत मेहनत कराई घर समूह ने कार में वाटिका वगैरह सब लगाई हुई है किसी से की भी हो
0: अच्छा तो वाटिका में तो की थी भाई की लगाई वाटिका में
1: वाटिका में बैंगन की सब्जी बैंगन से लगाया हो मिर्चा की सब्जी है
0: अच्छा
1: पहले तो सब्जी लगाई हो किसी से की जरूरी हो ना तो उम्र
0: हाँ
1: वास्ते में पे
0: तो बढ़िया लगता होगा नहीं एक बाजार से मोला है चीज खाओ एक खुदरो उगाओ शुद्ध एकदम
1: तो
0: शुद्ध
1: कोई भी आकर मेहनत करी हो ये कारण थोड़ी आगे बढ़ी हो पहले तो कम मेहनत करती थे को लगे कोशिश करते करते आग लग गया है
0: लग गया बढ़िया हमें आगे की चीज 52 रात दो है
1: हमें मौसम तो थोड़ो ये महीनो है थोड़ो खराब है
0: अच्छा अच्छा
1: अगले महीने बाद जून जुलाई में फसल ले होते
0: तो अच्छी बात है नहीं एक तो भी के भी खुद भी भाव और बाजार चीजों में कभी नहीं था नहीं की मिलोड़ा वे कोई कभी इंजेक्शन लगा वे है नहीं आज जो खुद जो को बाहर तो शुद्ध जे तो वो ना पूरा साग खावन रो स्वाद ही मन तो लगे अलग ही जो तो उसे
1: स्वाद भी अलग हुई मेरे
0: वाह वाह
1: तो
0: बहुत
1: सभी महिलाओं ही क्रिकेट करो ही के सब आगे बढ़ो हूं कहो जाती है कौन करो तो अपन समूह बढ़िया चले तो करो नाम बढ़िया निकले के भाई बेटा को भी समूह बढ़िया चले यार आ रही हो गई हो एक बात करो के मिल जुल कर लो और समूह आगे बढ़ो जब ये समूह चल रहा तो जाके एक भी बढ़ो ही तो बढ़ो
0: सही बात है देखो इनो की कहे कि आम के आम गुठलियों के दाम एक तो थोड़ो खुदरो तो नाम भेज पे है ठीक है और अलावा ठीक आपके परिवारों भी नाम रोशन करो तीसरी बात थोड़ा स्वास्थ्य मिले ही पे है नी आपो जो को काम करे उस आपो ने सेहत मिली थी आपो खुद और आपो रो खुद रो दारोमदार आपो खुद उठा जे और बात बचत में पैसों रे और अर्ज अगर थोड़ी फसल बढ़िया वे जो मान लो तो अधिक बाया बढ़िया है तो थे बाजार से महंगे दाम में भी आप तीसरी चीजों बेच सको क्योंकि लोगों ने ठा है कि थो मेरे में हानिकारक केमिकल कौन मिलाया है
1: नहीं
0: बिल्कुल केमिकल कौन मिलाया तो थोड़ी जो चीज है वो बाजार ही चीज तो बदीक में बिकस है क्योंकि पतिया रोड़ो भी एक कनली लुगाई ले सके मुझे पड़ोसन भाई तुम नो ठाए बढ़िया भाई वो झट खरीद से अंखियों देखी चीज है तो मन लगे आप और इनकम भी बढ़े है नहीं बे पैसा हाथ में आवे तो क्या ना पोचा लगे
1: ना के नहीं कौन लागे हाथ ही मेहनत करन नो के नहीं कुत्ता को लागे सब बाबू मैं आज आगे बढ़ो तो बढ़िया ही जे घर आई बे कुत्तो है अपन जो अपन ऋण मिल गए काम करो तो आगे हो ही तो ही
0: और अच्छी बात समोरी है भी है कि देखो एक लुगाई की सोचे कि हूँ आगे बढ़ा हूँ मौजो करो लेकिन समूह में 10 लुगाए हैं
1: हाँ हूँ सभी समूह में कोई है हूँ एक बटन लोगों का हूँ बहुत पूरे समूह महिलाओं ने कोई

0: હું મહેનત કરું જ્યાંથી જેમ મહેનત કરું જેનો અર્થ હું બળિયા ચાલે એક હું મહેનત કરું હું અટી રહી મહેનત કરું હું બળિયા સમૂહ ચાલે હેંગ મહેનત કરું આગે બઢો તો અકાઉન્ટ સમૂહ બળિયા ચાલે
1: ઉસ કહે કે સબસે સુંદરતા થોડી પૂરી બાત રહી હૈ જે કે સમૂહ આગે બઢે
0: આપણે કે બેડા ગામ સમૂહ બળિયા ચાલે સેમ આગે આગે બઢો તો કે ગામ
1: देखिए पार्वती जी से तो गए कोने नहीं अरे हर घर में पार्वती जी होते क्योंकि सब वे समूह विकास वे सबरो विकास वे और पूरे पूरे गांव रो विकास और जिस गांव आके बढ़े तो जैसलमेर में नाम वे की डेढ़ा गाँव जैसलमेर है तो भाई थोड़ो कौम मुझे बहुत बढ़िया लगी और हूँ तो सोचे कि थे आप रो नाम रोशन करो परिवार रो करो आप समूह ना आगे बढ़ाओ आप गाँव रो नाम ऊंचो करो और गाँव ना बाहर भी के जाओ तो ढा पड़े कि जैसलमेर से एक जनी आई है नहीं? पूरे राज्य में भी नाम होना चाहिए जब बड़ा बड़ा आयोजन वे बार में तो वो टाइम भी था लोगों ने बढ़िया सम्मानित किया जावे ताकि लगे कि भाई कोई लुगाई हो काम करे भी हो जी तो मौर्य थोसु है थोसु विनती कि यहाँ आगे बढ़ता रहा आप दई लोगों ने प्रेरित किया और भी लुगाई आगे लाया और भगवान से यही प्रार्थना है कि थोड़ा थोड़े हर कार्य में सफलता दे।
2: प्रणाम पो सुनियो अन्नपूर्णा कार्यक्रम जो कि स्वयं सहायता समूह मथे आधारित हतो पार्वती जी री खास बातचीत तृप्ति बाटिया सु तो बहनों देखो अगर अपो तकनीक सुजुड़ो ही तो अपो अपोरे कौम में और भी अधिक जिको है निखार लाए सको ही और तकनीक रे प्रयोग सु आपरी जिको चीज है वे ना बड़े मार्केट में भी जिको है आसानी सु बेच सको तो वे वास्ते अपनो कुछ नई चीजों नो सीखनो पड़े तो इरे वास्ते हमेशा जीवन रे हर पल में सीखन री जिको ललक है वो कदे खत्म नहीं होनी चाहिए और वे वास्ते थोड़ो बहुत बचपनो हमेशा खुद में रहनो चाहिए क्योंकि जब अपरे मोय थोड़ो बचपनो रहसे तो कुछ नयो करण री कुछ आगे और करण री जिको ललक है वो और भी अधिक बढ़ती रहसे तो ये वास्ते जिको नई नई तकनीक है जो हण पार्वती जी बताई कि वो जिको है कृषि सखी भी है तो वो आपरी बागवानी भी करे और ये जिके सहायता समूह से जुड़ोड़ा है उरे तहत भी काफ़ी सारा काम आवे कसीदाकारी है सिलाई बुनाई है बैग बनावन रू काम है चिड्ढो रू महीन काम है और जिको है रल्ली जिको अपरे थ्रू बहुत ही फेमस प्रसिद्ध आइटम है ओ आड़ो कॉम है पैचवर्क रू कॉम है बहुत सारा कॉम है अगरबत्ती बनावन सु है आजकल जिको है साबुन भी बने तो ये तहत बहुत सारा कॉम हुए ये वास्ते अपनो अगर अपो नई नई चीजों नो सीखोए तो सीखन रे वास्ते अपनो जिको है नई नई तकनीकों नो भी अपनावनो पड़े और वो अपनावन वास्ते भी अपनो जिको है तैयार रहनो चाहिए तो बहनों अपरे पुराने कहावत भी है कि आदमी पढ़ियो लिखियो भले ही नहीं होवे पर गुणियोड़ो होनो चाहिए तो अगर थो में गुण है कोई चीज सीखन री ललक है तो थे कुछ भी हासिल कर सकवे तो बहनों अपन परी बातचीत और चर्चा जारी रखसो पर पहले तबलेरी थाप भी जरूरी है बहनों नो लिया नो लोक संगीत री दुनिया में

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मैं ना सुनियो अणो है प्यारो सो लोकगीत और वेरे बाद में जरूरी संदेश। तो बहनों जो बारिश हुई और बारिश सु पहले जिको आसमान में इंद्रधनुष दिखे वो देख के अपरो मन बहुत ही खुश हो जावे। सात रंग बहुत ही सुहावना लगे, जो सात रंग है, सात पहाड़ है, सात नदियों है, सात अपोरा अजूबा है। तो वोज ये तर्ज मत है अपोर भारत सरकार रो एक प्रमुख कार्यक्रम है मिशन इंद्रधनुष, जिको की टीकाकरण और अपरे स्वास्थ्य से जुड़ोड़ो एक अभियान है। ये तहत जिको है 2 वर्ष तक रा जिको बच्चा है, गर्भवती महिलाओं है, उमरों जिको है 100% टीकाकरण सुनिश्चित हुआ है। ये वास्ते ये अभियान भी शुरुआत की गई थी ताकि कोई भी व्यक्ति चाहे अपरे वो गाँव ग्वार रो हुए चाहे शहर रो हुए वो ये टीकाकरण से कोई भी वंचित नहीं रहे। ये वास्ते ये योजना रो नाम ही इंद्रधनुष रख दियो गयो। सात रंगोरी तर्ज मत है और ए सात जिको है जानलेवा बीमारियों है उमोसु बचाओ भी करिया करे। तो ए जिको मिशन इंद्रधनुष है ये री विशेषताओं की है। तो ए जिको टीकाकरण है ए अपोरी जिको है बाल मृत्यु दर है उए ना कमी करण में बहुत ही फायदेमंद है। कितनी सारी बीमारियों हैं जिको हमारे अपोरे एत्सु गायब भी हो गई है, जो है चीचक है, यहाँ बीमारियों में थे हमें वो पूर्ण रूप से काबू पा लियो है। तो ये वास्ते बहुत सारी ऐडी बीमारियों होती जिको सु अपनो तकलीफ होती थी हमें पीलिए और पोलियो वास्ते भी जिको है ये टीका लगी। तो ये तहत जिको है 11 प्रकार की जानलेवा बीमारियों हैं और बचाव रहा टीका लगाए जावे जिके हमारे डिफ्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है, पोलियो है, टीबी है, खसरो है, हेपेटाइटिस बी है। तो ए जिको अभियान है इन्हों प्रभावी बनाने वास्ते अपर जिको सरकार है वो बहुत सारा कार्यक्रम कर रही है और 5 साल तक रे बच्चों नो और गर्भवती महिलाओं नो ए टीका लगे। तो अपन भी है चाहिए कि अपर घर में अगर कोई गर्भवती महिला हुए तो उए रो भी सही समय में सही टीकाकरण हुए और साथ ही साथ अगर छोटा छोटा बच्चा है तो और अभी अपन समय में टीका लगवा जाए ताकि वो भी यहाँ सब बीमारियों से जो है बची उड़ा रहे। तो इस वास्ते बहनों हमें पूरी बातचीत चर्चा भी खूब सारी करी पर समय जो है वो तेजी से घूमते रहे, हमें समय इजाजत को नहीं देवतो कि आप पूरी बातचीत चर्चा जारी रखो। आप सो फिर मिलन रहे बाद रे साथ रेडियो सखी टीना नो दे रहा हूँ सीख। राम राम सा।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम पणिहारी, यह आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है मिड डे न्यूज और इसी के साथ 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। इन समाचारों को हम दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से रिले करेंगे।

0: degrees Celsius, where the minimum temperature was in the range of around 27 degrees Celsius. As of yesterday, 44.6 degrees Celsius was recorded in the ridge area station of IND. Sardarjung station recorded 43.4 degrees Celsius, Lodi Road station 43.8 degrees Celsius, and 43.5 degrees Celsius was recorded at Palam station. Priya Mandal, Akashwani News, Delhi.
1: In Uttar Pradesh, orange alert for heat wave to severe heat wave conditions has been issued again for the coming week. Banda continued as the hottest place in the country on the second consecutive day with a temperature of more than 47 degrees Celsius. Chief Minister Yogi Adityanath directed district magistrates, the health department, power department and relief agencies to remain on alert mode. More from our correspondent.
2: Apart from Banda, which recorded a staggering 47.6 degrees yesterday, several districts across the state are experiencing severe heat wave conditions with maximum temperatures hovering near or crossing the 45 degree mark. The Indian Meteorological Department has issued a heat wave alert for 33 districts and advised people to remain cautious, especially during afternoon hours. Heat wave conditions will prevail in the southern and central parts of the state for the next 1 week, while whole state will have hot nights for the next 2 days. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
1: IMD has also forecast heat wave to severe heat wave conditions in Madhya Pradesh today. Heat wave conditions are likely to prevail over Bihar and Marathwada during the day and over Punjab, Haryana, Chandigarh for the next 5 days. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.2% up in afternoon trade today. The Sensex rose by 136 points to 75,451, while the Nifty added 42 points to 23,692 when reports last came in. Meanwhile, the broader market on the National Stock Exchange outperformed the frontline indices. In IPL cricket today, Rajasthan Royals will take on Lucknow Super Giants in Jaipur at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad confirmed its place in the playoff, defeating Chennai Super Kings by 5 wickets at M.H. Chidambaram Stadium. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to attend 3rd India-Nordic Summit in Oslo, aimed at strengthening cooperation in technology, renewable energy, defence and trade. Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, in a joint newspaper article, stressed on partnerships in times of global uncertainty. Supreme Court refuses to recall its earlier order of keeping sterilized or vaccinated stray dogs in shelters. IMD issues yellow alert for heat wave in national capital for next 3 days. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लू का येलो अलर्ट जारी किया आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉसडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से।

0: संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
1: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
0: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसी कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों की हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
2: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशन लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
5: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसीजन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
6: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
5: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कम्प्लीट एक्सप्रेशन।
2: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
7: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
2: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
8: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: हम आकाशवाणी के जैसलमेर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 MHz पर श्रोताओं अब से लेकर 5:30 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों को हम मुंबई के आकाशवाणी केंद्र से रिले करेंगे।

0: निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा।
1: हम सुन रहे थे ये गीत ताजमहल फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल और रोशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत सेहरा फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और रामलाल के संगीत के साथ।

0: तेरी कसम खाता
1: तू बित भी हो मेरे शीशे दिल में ओ मेरे हमदम मेरी बात।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी तरती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं।
1: चढ़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।
3: वो जब याद आए बहुत याद आए। वो जब याद आए।

0: हम सुन रहे थे पारसमणि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में, असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई गांवों में चली पहनिया,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। मिलती है धाराएं 3, विचार स्वर और संगीत,
4: तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा,
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून,
5: ये ना सोचो इसमें हार है कि जीत है,
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ,
5: देना साथ मेरा वो हम नवा,
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
5: तुम आ गए नूर आ गया,
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

मुझे जीने दो इस फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और जयदेव के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत, मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से मन्ना डे की आवाज होगी, शैलेंद्र की है बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत। पूछो ना कैसे।

दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए, पग पग दी

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी के आवाज में मजरूर सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए चलते हैं सदाबहार नगमे के अंतिम गीत की ओर जो कि है हमरा ही फिल्म से। मुबारक बेगम मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। आज्ञा दीजिए इस गीत के साथ आप सबका कल्याण हो। नमस्कार।

पर हंस के चलो तुम फूल बहा खिल जाते हैं, दम लेने को जहां रुको तुम मदशाले बन जाते हैं, तुमको छू कर पवन झकोरे खुशबू लेकर जाते हैं, लेकिन हम तो देख के सूरत दिल थामे रह जाते हैं, दिल थामे रह जाते हैं, दिल से दिल के तार मिला लो है मेरे हमराही, तो क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार।

0: सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और सोनाली आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
0: सोनाली बिल्कुल अच्छे हैं और देखो जो बाहर ये जो गर्मी से हमारी जो दो दो हाथ हम लोगों के हो रहे हैं उससे संभल के बच के चल रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाले बल्कि सभी लोग अपना बहुत अच्छे से खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे।
1: हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि भाई मुंबई में बहुत गर्मी है तो सखियों अपना ध्यान रखिए।
0: अरे धन्यवाद, और हम सच में बहुत अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं।
1: और जब कोई ऐसे हमारे लिए कोई पूछता है तो कितना अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, है ना। और इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता एक बार अगर सुन भी लेना कि आप सब कैसे हैं तो कहीं तो ऐसा लगता है कि हम कोई तो है हमारा जो हमसे पूछ रहा है, हमें जान रहा है,
1: ख्याल रखने वाला है ना। विषय बता दे।
0: चलिए,
1: बातें हल्की फुल्की। इसमें एक विषय है कि परीक्षा परिणाम, यानी कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। तो दीपा आपसे ये सवाल है कि आपको कभी उपहार मिले हैं या मार पड़ी है या दोनों ही हुआ है?
0: मार नहीं पड़ी। मार हाँ एक बार क्लास में पड़ी थी, वो बाद में हम बताएंगे जब हम इस सेगमेंट को लेंगे। हाँ। वो क्यों पड़ी थी वो भी बताएंगे। लेकिन कभी ऐसे परीक्षा के परिणाम के लिए मार नहीं पड़ी। हाँ। लेकिन हमारे पिताजी की आंखें बस ऐसी हुआ करती थी ना, वो हमें नहीं डांटते थे, वो मम्मी के नाम को लेके मम्मी को बोलते थे क्या हो रहा है ये, बस इतना ही काफी था हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए।
1: यानी वो जमाना ऐसा था कि बच्चे सिर्फ मम्मी पापा के आंखों से डर जाते थे,
0: आंखों से डर जाते थे।
1: और वैसे मुहावरों की दुनिया में आंखों का तारा होना, तो जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी की आंखों के तारे होते हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि विविध भारती जो है वो हमारी आंखों का तारा है।
0: क्या बात है। और ऐसे ही तो हमारे सारे श्रोता इस कार्यक्रम के तारे हैं,
1: है सचमुच
0: जगमगाते हुए
1: जी। और उद्यमी महिला इस सेगमेंट के अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे कल्पना सरोज के बारे में
0: जी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने परीक्षा में कुछ गलतियां की हो या कोई और भी अनुभव, सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है, जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी आदत नहीं है या हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में हमें दिल में बहुत पछतावा देता है
1: और
0: हम
1: कचोटते रहता है
0: और ऐसा लगता है हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसी हूं नहीं या मैं तो ऐसा था नहीं, ऐसा मैंने क्यों कर लिया। ये अपराध बोध जो है ना ये दिल को बहुत घर कर जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें सताता रहता है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके, कहीं हम वो अटक के न रह जाए। इसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे श्रोताओं ने लिख के भी भेजा है, लेकिन आप हमें अब कोई घटना भी बताइए अगर आप चाहते हैं तो,
1: अगर कि बताना चाहते हैं
0: कि कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी ऐसा अनुभव जहां आपको लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया और उसका मुझे बड़ा पछतावा है, तो कहीं चाहते हैं कि दिल खोल कर कहिए। और बात अगर आपको सही लगती है तो बताइए, तब तक ये गीत सुनिए।

मस्ती में डूबी है मस्ती में आ इस खुशी में हम नाचे गए किसको पता किसको पता क्या किसने किया सब

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: तो भाई हम तो अपने श्रोताओं से कहेंगे सृजन भारती के इस जो अंक में जो प्रोग्राम होने वाला है अगर आपकी कोई रिश्तेदार या आप कोई खुद भी हैं तो जरूर पहुंचे। इस कार्यक्रम में सभी का आमंत्रण है, बिल्कुल स्वागत है सभी का। और आज हम जैसे उद्यमी महिला के बारे में जानकारी देते तो आज हमने चुना है कल्पना सरोज जी। तो कल्पना सरोज भारत की एक प्रसिद्ध उद्योगपति समाजसेवी और प्रेरणादायी महिला उद्यमी है। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उन्हें संघर्ष साहस और आत्मविश्वास की मिसाल भी माना जाता है।
2: कमानी ट्यूब नामक एक कंपनी है जो बंद होने की कगार पर थी सोनाली, उस समय उस कंपनी को फिर से सफल बनाने का पूरा

0: और वे मुंबई चली आई और मुंबई आने के बाद कल्पना सरोज ने एक सिलाई कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से अपना छोटा व्यवसाय आरंभ किया। पहले सिलाई का काम किया, फिर फर्नीचर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक पहचान सफल उद्यमी महिला के रूप में बना ली।
1: और कल्पना सरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कमानी ट्यूब्स, ये कंपनी को पुनर्जीवित करना। कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही थी और लगभग बंद होने की स्थिति में ही थी। कल्पना सरोज ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक संतुलन बनाया और अपने प्रबंधन कौशल से कंपनी को फिर से सफलता के मार्ग पर लेकर आई। वो
0: यानी कितनी बड़ी बात है ना दीपा, कि यानी किसी बंद पड़ने जा रही थी वो कंपनी और उसमें खुद जाकर और उसमें आगे बढ़ना, यानी कितना ज्यादा संघर्ष किया होगा उन्होंने।
1: सही बात है बिल्कुल। और फिर साल 2013 में भारत सरकार ने उन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। वे कई मंचों पर प्रेरणादायक वक्ता के रूप में भी जानी जाती है
0: और इसके अलावा समाज के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है। कल्पना सरोज केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रही बल्कि समाज सेवा और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य भी करती है, विशेष रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। और दीपा, कल्पना सरोज का जीवन ही सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, सफलता की राह में अगर बाधा है तो उससे हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, मेहनत और आगे बढ़ने की इच्छा हो तो उनका जीवन संघर्ष सफलता मिली जाती है। और एक प्रेरणादायक कहानी है उनकी जो हर व्यक्ति को अपने सपने को पूरा करने की प्रेरणा देती है। तो जब हम ये सेगमेंट लेते हैं ना दीपा, तब हमें इतनी ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि एक महिला अगर कुछ मन में ठान ले तो वे कर गुजरती ही है।
1: बिल्कुल। और उसके लिए कोई आपको आपकी शैक्षणिक जो योग्यता है उसकी भी जरूरत एक बार के लिए तो थोड़ी पीछे हो जाती है। फिर वो मन में जो आपका जुनून, जोश जो आपका रहता है ना, कहीं से एक आंतरिक ऊर्जा जब निकल के आती तो वो शक्ति जो है, मात्र शक्ति, पता नहीं क्या है उसमें, क्या जज्बा है कि बस वो जब करने के लिए ठान लेती है तो कर ही गुजरती है।
0: और उसमें आत्मविश्वास अगर मिल जाए साथ में, फिर वो आगे बढ़ने से उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल सही कहा। और इस बात पर अभी तो हम लेते हैं एक अंतराल और भी बातें करेंगे
0: जी।

0: देखो सोनाली, हम सुन रहे हैं ये गाना धीरे धीरे मचल, और मन एकदम ऐसा ना उसमें खो सा गया था, तुम्हें नहीं लगता?
1: बिल्कुल खो सी गई थी, इतने सुंदर इसका संगीत है और लता जी की आवाज, हा हा हा क्या कहने, बहुत सुंदर गीत
0: बिल्कुल। और देखो ना
1: ये गाने भी हमारे आंख के तारे हो जाते हैं।
0: बस मैं मन में सोच रही थी शब्द तुमने दे दिए, इसे कहते हैं प्यार, है ना दोस्तों, सही कहा या नहीं?
1: बिल्कुल सही कहा। कभी कभी ऐसा था ना, हमारे दोनों की मन की बात होती तो वो एकदम से मुंह से निकल ही जाती है।
0: और बिल्कुल वैसा ही संदेश फिर हमारी सखियां लिख भेजती है, तो ऐसा लगता है देखो मन जब मिल जाते हैं तो शब्द भी एक हो जाते हैं, है ना। तो भाई बात हो रही थी हम आंखों का तारा, ये मुहावरे की, और बहुत सारे संदेश आए हमारे श्रोताओं और सखियों की तरफ से। तो पहला संदेश पढ़ते हैं, ये लिखा है कि बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा, बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय या अति प्रिय होना इसका मतलब है। तो ज्यादातर अपनी संतान के प्रति ये कहा जाता है, चंदा है तू मेरा, सूरज है तू। ये गाना उनको लग रहा है कि ये गीत शायद बजेगा, देखते हैं भाई बजेगा या ना बजेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि गीत तो आएगा ही ना,
1: कोई ना कोई गीत तो आएगा ही। और एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, आंखों का तारा होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा, इसका अर्थ तो बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्यारा होना, बहुत लाडला होना, और छोटा बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा होता है, और VBS के सारे प्रोग्राम हमारे आंखों के तारे हैं।
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, और बस कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजी कि जहां तक आंखों का तारा होने की बात है, विविध भारती भी हमारी आंखों का तारा है, यानी हम सभी का बड़ा प्रिय प्यारा मनोरंजन चैनल है, और आज का मंच संभाल रही हमारी दोनों बेटियों भी हमारी आंखों के तारे हैं।
1: क्या बात है, बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं को, सखियों को, जो इतना प्रेम आपकी तरफ से मिलता है। और सच में हम मुलाकात हमारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कोई एक जुड़ाव तो है।
1: बिल्कुल, पिछले जन्म का होगा या इसी जन्म का जुड़ाव है।
0: हाँ,
1: ना? एक नाजुक सी डोर है श्रोताओं के बीच और हमारे बीच, ये हमें बहुत सारा संबल देती है ना?
0: बिल्कुल सही कहा।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, सखी सहेली प्रोग्राम हमारी आंख का तारा है, यानी बहुत बहुत प्यारा दुलारा है, बहुत ही मनपसंद चीजों कहते हैं, आग का तारा कहते हैं, और हर माँ की आग का तारा होती है उनकी संतान, देशभक्त क्रांतिकारियों की आग का तारा उनका प्यारा हिंदू।

0: हिंदुस्तान, क्या बात,
1: क्या बात है,
0: हमारा देश हम सभी की आंखों का तारा है।
2: और देखो होना भी चाहिए। और एक और संदेश आया है, आंखों का तारा होना इसका अर्थ है हम सभी जानते हैं कि बहुत प्यारा होना। ये मुहावरा अक्सर घर के किसी लाडले बच्चे या व्यक्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। हम सबके जीवन में हमारी आंखों का तारा कोई ना कोई तो जरूर होता है। उसको हम ये बताएं कि तू हमारे आंखों का तारा है या हम तुझे कितना प्यार करते हैं। पहले आप मुहावरे के माध्यम से बताएं कि आप उसको प्यार जताकर बताते हैं, या ये जरूर कह सकते हैं कि ये मुहावरा हमारी निजी जिंदगी में हमारे प्यार को दर्शाने के लिए बहुत काम आता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम कभी हम जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, नाराज हो जाता है, तो हम उसको लाड़ दुलार में नहीं कहते, तू तो मेरी आंखों का तारा है, क्यों नाराज हो रहा है ना।
0: ये माँ जो है ना, हर माँ के मुंह की बात है, उनके जुबान पे ये शब्द आता ही। एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा कि आंखों का तारा होना मुहावरे का तो बहुत प्यारा या अत्यंत प्रिय होना है। ये मुहावरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी का सबसे पसंदीदा और लाडला होता है। इसका अर्थ बहुत अधिक स्नेह या प्यार का पात्र होना है। वाक्य प्रयोग, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। छोटा बेटा होने के कारण सोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है। उन्होंने उदाहरण लिख के भेजा है। वैसे हर बच्चे जो होते हैं ना, अपनी माँ की आंख के तारे होते हैं। फिर वो छोटा बेटा हो, मंझला हो, बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, सारे लोग अपने माँ की आंख के तारे ही होते हैं।
2: बात तो बिल्कुल सही की कही। और अब क्या लगता है आपको, हम देखते हैं कि हमारे पसंद का जो गीत हमने निकाला, हमारे श्रोताओं को वो भी पसंद आएगा, या उनकी जो लिस्ट उन्होंने बना रखी होगी छोटी सी कि शायद इस मुहावरे के बाद ये गीत बजेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पसंद और उनकी पसंद मिलती है ना
0: जी।

0: बना ली। मैं देख रही हूँ कि इस गीत को सुनते सुनते कुछ संदेश पढ़ के आप जैसे कुछ भावनात्मक हो गए हो।
1: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरी माँ ये गाना हमेशा गुनगुनाती थी और मैं 5 बहनों में इकलौता भाई हूँ, तो मैं अपनी मम्मी की आंख का तारा था।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो जो बच्चे होते हैं ना, माँ की आंख के तारे होते हैं, फिर बेटी हो बेटा हो, पर जो हम बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम अपनी माँ को दुखी कर देते हैं कि क्यों इस तरह से हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, या क्यों हमें हमेशा लेक्चर देते रहती हो,
0: या कुछ कोई खास चीज खाने के लिए मम्मी बोलती है ना, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो, अब हमारा मन नहीं होता और हम बोलते हैं कितना आप बोल रही हो, नहीं खाना भाई, हम झुंझला के उनको कभी कई बार
1: गुस्सा हो जाते हैं।
0: हाँ, और कुछ कड़वे बोल भी बोल देते हैं। माँ दुखी हो जाती है, लेकिन उनकी आंखों का तारा बनने में हमारी कोई कमी नहीं होती, उनके लिए हम वैसे ही बने होते हैं।
1: वैसे ही बने होते हैं, फिर क्या होता है कि एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगता है अरे मैंने फालतू में माँ का दिल दुखा दिया, और हम अपराध बोध से ग्रस्त भी हो जाते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: माँ तो हमारी इतनी प्यारी है, वो कहती है कि देर रात तक ना जागो, पर हम जागते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो ऐसे कपड़े पहनो इस तरह के कपड़े पहनो, मम्मियाँ डांटती है। और फिर कभी,
0: और जब कुछ सालों के बाद जब हम उस पे चिंतन करते हैं, तो हमें लगता है कि माँ कितना सही कहती थी और हम कितना चिढ़ गए उस वक्त। और फिर वो एक मन में ना कहते हैं ना हम, जैसे कि पछतावा होने लगता है।
1: और अगर माँ ना हो इस दुनिया में,
0: हाँ,
1: तब तो और भी बुरा लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और बात तो तुमने बहुत गंभीर शुरू कर दी है सोनाली, लेकिन वक्त हो गया एक अंतराल का, तो अंतराल लेके इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं।

0: सोनाली, आप क्या बात कर रही थी अपराध बोध के लिए?
1: ये अपराध बोध शब्द ही ऐसा है ना कि जिसको पढ़ते ही अपराध बोध आ जाता है दीपा। जब हम मन की बात कहते हुए बोल देते हैं है कि मुझे गिल्ट खा रहा है या पछताव हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति जो इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखली करती जाती है। अतीत में हुई किसी गलती, गलत फैसले या किसी को अनजाने में पहुंचाए गए कष्ट के कारण ऐसी भावना पैदा होती है। हालांकि कुछ हद तक अपराध बोध हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक मन में घर कर जाए ना तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा, अतीत को देखो बदला नहीं जा सकता सोनाली, लेकिन जो वर्तमान है आज है उसको संभाल कर भविष्य को जरूर संवारा जा सकता है। इसलिए खुद को माफ करना, अपराध बोध के जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है।
1: और यदि हम किसी बात को लेकर ग्लानी या अपराध बोध से जूझ रहे हैं तो कुछ तरीकों को अपनाकर खुद को मुक्त कर सकते हैं। जैसे गलती को स्वीकार करना अपराध बोध से बचने का पहला कदम है, कि ये मानना कि हमसे गलती हो गई है।

0: गलती को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद से पूछे कि जब वो गलती हुई तब क्या हम सचमुच किसी बुरे इरादे से काम कर रहे थे। कई बार हालात, अधूरी जानकारी या सामाजिक पारिवारिक दबाव के कारण गलतियां हो जाती है। खुद को हर बात में विलन ना बनाए, यानी खुद को अरे इतना मैं इतनी तो बुरी नहीं हूं, पर मुझसे गलती हो गई है तो हो गई है।
1: बिल्कुल सही कहा। और माफी मांग सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वो कैसे? अगर गलती से किसी दूसरे को ठेस पहुंची है तो बिना किसी अहंकार के उनसे सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस नुकसान की भरपाई करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और ये करके देखें आपके मन को बहुत गहरी शांति देगा। फिर आत्म क्षमा अपनाना चाहिए। हम ना दूसरों को तो कर देते हैं क्षमा, लेकिन कभी कभी अपने ही किसी किए के लिए बार बार बोलते ना, मैं उसके लिए खुद को माफ नहीं कर सकती, मैं अपनी ये वाली बात को बिल्कुल भूल नहीं सकती। इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, हम अपने लिए सोचने लग जाते हैं। और अक्सर हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ तो कर देते हैं, लेकिन खुद के प्रति इस तरह से हम कठोर हो जाते हैं। लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है, फिर देखो है कि नहीं सही बात। और खुद को एक इंसान के रूप में देखें जिसने गलती की, न कि खुद को ही एक बुरा ही इंसान हम मान लेते हैं बिल्कुल कि हाय मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। इस तरह की बातें भी कभी कभी निकल आती
0: है। ऐसे में क्या होता है, निराशा की खाई में ही गिरे रहते हैं हमेशा। अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं, और उससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो अतीत की उस घटना को एक कड़वी याद के रूप में ना देखकर एक सबक के रूप में अगर हम देखें ना, तो बहुत हद तक हम आगे भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और हमारी गलतियां हमें फिर गिल्ट में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में भी मददगार होगी। जो बीत गया उस पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो आएगा वो हमें पता नहीं। इन्हीं बातों की उलझन में हम अपना वर्तमान क्यों बिगाड़े। और फिर देखिए ना, अन्य चिंता में वर्तमान के खूबसूरत पल हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलते चले जाएंगे। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को आज सुधारने संवारने में बिताएं, एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है।
1: बिल्कुल, हम अपने अतीत में की गई गलतियों से कई बड़े हैं सुनारी, और कई बेहतर भी हैं। खुद को कोसना बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर नया दिन खुद को सुधारने का एक नया मौका लेकर आता है।
0: और हमारे श्रोताओं ने भी इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। एक साथी लिखते हैं, अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता है, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता है। जीवन का उद्देश्य निर्दोष बनना नहीं बल्कि सीखते हुए बेहतर बनना है। गलती को स्वीकार कीजिए, उससे कुछ सीखिए, लेकिन उसे अपना स्थायी पहचान मत बनाइए। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, वो तब छोटा होता है जब सीखना छोड़ देता है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह का एक और संदेश कहता है कि अपराध करने के बाद दिल दिमाग पर एक बोझ महसूस होना स्वाभाविक है। आपसे ये अपराध जानबूझकर के नहीं हुआ है, तो खुद को कोसने के बजाय शांत चित्त पूर्वक आत्मचिंतन करें, भविष्य में इससे इसके प्रति जागरूक रहें। अतीत के गलियारों में घूमने के बजाय परिवार के साथ हंसी खुशी भरा माहौल बनाए रखें, वर्तमान आपका ऐसा ही होना चाहिए।
0: एक साथ ही लिखते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती है, मन से उसे मान लेना ही समझदारी है। नहीं तो जब तक मान न लूं हमेशा अपराध बोध से मैं ग्रस्त रहती हूं, क्योंकि कोई ना कोई आपकी गलती पकड़ ही लेते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर है मान लिया जाए। साथी एक और साथी ने लिखा है कि अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता। इसी तरह की बातें और भी हमारे साथियों ने लिखी है।
1: भाई देखो, दिल की बात कहीं किसी को कह देनी चाहिए, कोई दोस्त को, कोई ऐसा आपका भाई होते हैं ना, हमारे कजिन्स भी होते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं, तो अगर आप अपने दिल की किताब कहीं खोल देंगे तो मन शायद कुछ इस तरह से हल्का हो सकता है।

0: दिल ने कहा है चला चल,
1: जो दूर पीछे कहीं रह गए अब उन्हें बदल दूँगा।

0: सुना ली।
1: मुझे बताओ, एक संदेश बहुत गहराई से पढ़ रही हो तुम।
2: जी, हमारे एक सखी ने लिखा है कि कभी कभी हम अनावश्यक रूप से अपराध बोध पालकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती है। कुछ लोगों को तो अगर जागने में देर हो जाए तो भी अपने आप को कोसने लगते हैं। भाई, आप जरा देर तक सो लेंगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। किसी से खाने में नमक ज्यादा पड़ गया तो परेशान हो जाएंगे। आप ही तो रोज स्वादिष्ट बनाती हैं, एक दिन गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा। जिंदगी को हल्के फुल्के ढंग से जिए, बोझ लेकर नहीं जिए। वही एक साथी ने लिखा कि भाई, मैंने भी एक कुछ ऐसा काम कर दिया था कि मेरी दुकान के पीछे में एक जगह थी, वहां पर बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, तो मुझे परेशानी हो रही थी, तो मैंने बच्चों को उठा के कहीं भिजवा दिया।
1: अच्छा।
2: बाद में दूसरे दिन उन्हें मंगवा लिए बच्चे, तो बहुत अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे, अब उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है
1: बिल्कुल। और आपने देखिए, माँ को उसके बच्चों से मिला दिया है, तो इससे ज्यादा खुशी जितने खुश आज है ना, ये सुनकर और ये पढ़ के आपका संदेश हमें भी बहुत खुशी मिल रही है। और भाई, इसका परिणाम तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के परिणाम में कभी कभी घर में मार भी पिट जाती है और कभी कभी उपहार भी मिल जाता है।
2: पर ऐसा होता है ना दीपा, कि उस वक्त भी अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी परीक्षा में हमें कम नंबर मिल गए, तो खासकर लड़कियां क्योंकि सब लोग बोलते ना कि अरे, हमारी बेटी तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, हमेशा फर्स्ट आती है, और कभी तीसरा चौथा नंबर आ गया तो उस बेटी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे, मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की। और फिर उन्हें मन ही मन वो खाते भी रहता है वो।
1: बिल्कुल, लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम अब तो बच्चों को बहुत समझाते हैं, भाई पहला और दूसरा नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर के पीछे ना भागो, ये हमें भी सिखाया जाता था। लेकिन हाँ, कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक माता पिता को एक एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि भाई ये इतने नंबर तो लेकर ही आएगी या लेकर ही आएगा, तब और नहीं ला पाते तो कहीं हमें मन में वो कसोसता है। लेकिन भाई, अगली बार आप मेहनत करके हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तब छोटे होते हैं ना, तो ये सारी बातें नहीं समझ आती। लेकिन आज देखते हैं कि संदेश क्या कहते हैं। पहला संदेश है परीक्षा परिणाम। उपहार कभी नहीं मिला, बचपन में पापा की मार जरूर पड़ी है, लेकिन हर बार मम्मी बचा लेती थी। तो देखो, मम्मी तो यहाँ भी काम आई,
2: का तारा होते ना बच्चे।
1: इसीलिए
2: एक हमारे साथी लिखते हैं, कभी मार तो कभी मिले उपहार। हमारे जमाने में तो परीक्षा के परिणाम के बारे में तो हम फिक्र ही नहीं करते थे, ना माता पिता करते थे। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आगे पढ़ना नहीं था, पढ़ना ये हमारे रिजल्ट के आने के बाद पता चल जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे परिवार में पढ़ाई से ज्यादा काम धंधे पर ध्यान दिया जाता था। अगर फेल हो गए तो गृह उद्योग यानी कारखाना हमारा स्वागत करते तैयार रहता था। मुझसे बड़े सभी भाइयों का ऐसे ही स्वागत हुआ था। पूरे परिवार में मैं अकेला ही है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच सका हूँ। क्या बात है।
1: और एक हमारे साथी ने लिख भेजा है संदेश कि मेरे दादाजी, हम बच्चों को जिसका भी रिजल्ट 1 से 5 के बीच में रैंक में आता था, उनको मतलब उस जमाने में 5 रुपए देते थे। वो 5 रुपए हम तीनों भाई बहनों को मिलता ही मिलता था। क्या बात है भाई। और उस जमाने में यानी कि 40-50 साल पहले की बात होगी, 5 रुपया बहुत मायने रखता था। जी बिल्कुल रखता था। और कुछ मिलना ही हमारे लिए ये मतलब मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी। मैं तो SSC में सेंटर का फर्स्ट था और मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, क्या बात है। और मुझे 100 रुपए का इनाम भी मिला था।
2: एक हमारे साथी लिखते हैं, परीक्षा परिणाम की बात चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में मैं पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़े थे और हमारी किताबें समझते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो भी पास होने भर के मार्क लाता रहा। BA तक ये सिलसिला चला जब तक मैं मनबर हो चुका था। हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाने लगा, शादी भी हो चुकी थी और पत्नी घर में आ चुकी थी। हाँ, इधर 2 नाती अपनी परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में 1 ने 93% और 1 ने 87% मार्क लाए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं है। ये आजकल का जमाना है, यहाँ पर तो 99 भी मिल जाए तो कहते हैं कि 1% कहाँ चला गया
1: है। बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि ये वो शब्द है जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बोर्ड एग्जाम या फाइनल रिजल्ट के दिन वो गुड़गुड़ वाली, वो घबराहट वाली जो एक फीलिंग रहती है ना, वो सबको याद रह ही जाती है। भाई बिल्कुल सच बात है। एक समय सच में भावनाओं का ये वो समय है जब भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है, कभी खुशी, कभी गम, कभी मार डांट, तो कभी उपहार। तो खट्टी मीठी यादों को ताजा करते हुए वो बताते हैं कि रिजल्ट वाले दिन का माहौल तो सुबह में ही घर में सन्नाटा हो जाता, मम्मी भगवान की पूजा कर रही होती है, पापा अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं जबकि नजरें घड़ी पर होती है। परिणाम अच्छा हुआ अगर हुआ तो घर में दिवाली जैसा माहौल, मिठाई बांटी जाती है, रिश्तेदार फोन करते हैं, पड़ोसी हेलो बोलने आते हैं। परिणाम खराब तो घर में बिल्कुल ऐसा सन्नाटा जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, टीवी बंद, आवाज धीमी, सब ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी पड़ी मार तो जब नंबर कम आते थे तो लगता था कि अब तो बस धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और पापा का यह डायलॉग हमेशा होता, बगल वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, ये जुमला तो लगता है हर बच्चे का दुश्मन रहा होगा। भाई बिल्कुल सही कहा आपने। और मम्मी का डायलॉग रहता, सारा दिन मोबाइल में खेल में लगे रहोगे तो अब भुगतो उसका नतीजा। और एक हफ्ते के लिए टीवी खेलना बंद, टीवी बंद, और एक्स्ट्रा ट्यूशन की धमकियां मिलती, इस तरह की बातें होती। और अगर उपहार के रूप में उन्हें ये होता था कि जब मेहनत रंग लाती थी तो डर लगता था कि हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं। और डिमांड पूरी हो जाती थी, पापा से नई साइकिल या नया फोन या मनपसंद गेमिंग कंसोल की डिमांड पूरी हो जाती थी। तो भाई उन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बिल्कुल आंखों के सामने ऐसा लग रहा है हमारा बचपन भी कहीं ना कहीं सामने लेकर आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की आज यादें ताजा की होगी।
2: और तो गाना सुन ले,
1: चलिए।

0: भाई देखो, कितने लोगों को पढ़ने में दिल भले ही नहीं लगता हो, लेकिन यहाँ पे जो संदेश आ रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बहुत मन लगता था।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है दीपा, हमारे जमाने में सेवंथ बोर्ड होता था, एक स्कूल होने के चलते हम आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे, जिससे हम सभी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। पड़ोस में एक बच्चे को का नंबर कम आया, ट्यूशन पढ़ने वाले टीचर आए तो गार्जियन ने शिकायत किया। उस समय तो उनने सुन लिया, बड़ी अकड़ के साथ हमें सुनने लगे कि मुझे कम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, साई इतना दीजिए। जामे कुटुंब समाये, नया नया कबीर का दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते थे उन्होंने कान पकड़ कर बोला, सिर्फ पढ़ने की भी खाने में भी, खाने में हो तो कम हो जाएगा तो बहुत हल्ला करते हो।
0: और एक और संदेश कहता है कि परीक्षा परिणाम का दिन बच्चों से ज्यादा शायद माता पिता के लिए डर और उत्सुकता लेकर आता है। इस बार मेरी बेटी ने 10वीं की परीक्षा दी थी, सच बताऊं तो उससे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही थी उसके कितने मार्क्स आएंगे। जब उसका परिणाम आया तो उसने 90% अंक प्राप्त किए तो मन गर्व और खुशी से भर गया। अब उसकी एक प्यारी सी इच्छा है, उसे गिफ्ट में मोबाइल चाहिए। अभी हमने उसे दिलाया नहीं है, लेकिन आजकल वो बड़े प्यार से दूसरे बच्चों के स्टेटस दिखा रही है हमें और कहती, मम्मी देखो ये उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया। तो सच कहूं तो रिजल्ट के साथ जुड़ी ये सारी छोटी छोटी बातें जीवन की सबसे सुंदर यादें बनकर रह जाती है। तो भाई अगर आपने वादा किया है तो आपको अपनी बिटिया को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, और हमें भी आपको गिफ्ट देना होगा।

0: रानी, तुम कौन सा संदेश पढ़ने का कह रही थी?
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा परिणाम वैसे तो किसी के प्रतिभा को आकलन करने का मापदंड तो है नहीं, पर जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन तो होता ही है। स्कूल जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो परीक्षा भी होगी, परिणाम आने पर घर पर उसके अनुकूल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पर मेरा अनुभव तो अच्छे वाले ट्रीटमेंट का ही है, तब उपहार वगैरह मिलने का जमाना तो था नहीं, पर क्लास में फर्स्ट सेकेंड आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार जरूर दिया जाता था। मुझे तो फर्स्ट प्राइज ही मिल जाता था, जो भी मिलता था अनमोल होता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि परीक्षा के परिणाम उपहार या डांट, मुझे तो याद नहीं हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता था। नंबर कम आया तो गार्जियन समझाते थे, लेकिन अच्छे नंबर आने पर घर में कभी मिठाई मिल जाती थी, कभी अठन्नी चवन्नी मिल जाते थे। आजकल के गार्जियन बच्चों के लिए परीक्षा फल के परिणाम के लिए कुछ ज्यादा संशय में रहते हैं। आजकल कंपटीशन कुछ ज्यादा टफ है, नए नए रोजी रोटी और पढ़ने के आयाम भी खुले हैं। अगर कुछ कम है तो कुछ दूसरे रास्ता भी ढूंढ लेंगे। उन्हें डराया जाता है कि अगर नंबर कम आएंगे तो अगली बार फिर उसी क्लास में दो बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही अपमानजनक शब्द होता था। पर भैया, हम तो इतना कोशिश करते थे कि अगले साल नए क्लास में ही जाएं।
0: सही बात है। और एक और संदेश है, कहता है, परिणाम परीक्षा की बात चली तो बता दें कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में भी पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ाते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो पास भर होने का मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला और बाद में तो ये है कि हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाना, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी घर आ चुकी थी। हाँ, इधर हमारे दो नाती और अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% लाए हैं और एक ने 87% मार्क्स लाए, फिर भी वे लोग देखिए संतुष्ट नहीं है। और अब हम किस बात से संतुष्ट होंगे?
1: एक गाना सुन के
0: चलो।

रोके लूं मैं। आई फिर की रात अब बदला से क्या करूं मैं, आई फिर की रात अब बदला से क्या करूं मैं, याद आएगी।

0: yar çabba ver. Ben mere yar çabba ver. Mere yar çabba ver.
1: आज के हमारे श्रोताओं के जो जितने भी संदेश है, खूब हंसाया हमें,
2: इतने हम खिलखिला के हंसे तो कुछ बार तो मेरी आंखें छलक गई हंसते हंसते।
1: हाँ बिल्कुल, मैं देख रही थी श्रोताओं, लेकिन वक्त देखिए शब्बा खैर कहने का आ गया है, तो आप सभी दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
2: सोनाली पाठक का
1: नमस्कार।
2: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: दोस्तों, सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: दोस्तों, अगर हम वक्त का दामन थामकर अतीत में लौटें, तो फिल्म संगीत की वादियों में गूंजने वाली एक जानी पहचानी सी मीठी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सेल्यूलॉइड के पर्दे के उस पार से, कभी स्टेज, कभी रेडियो और कभी टीवी के जरिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज आपको आवाज देने पहुंचती रही है। जी हां दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका

0: कमल बारोट का, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की मेहमान है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। कमल बारोट जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: सुनने वालों को कमल बारोट का प्यार भरा नमस्कार।
0: वाह, आपकी आवाज में वाकई इतना प्यार घुला है, इतनी मिठास घुली है
1: कि वो आपकी जरा नवाजी है, आपका प्यार है।
0: लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल की आवाज है कि वो प्यार जो है पहुंच गया हमारे सुनने वालों तक। अब कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी संगीत यात्रा जो है वो कब, कैसे और कहां से शुरू हुई?
1: देखिए, मेरा जन्म तो हुआ ईस्ट अफ्रीका में, टेंजानिया में, और बचपन से ही पिताजी को संगीत का, घर में संगीत का माहौल था ऐसे समझ लीजिए। मेरी माताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे और घर में महफिल सजती थी। हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी जहाँ से मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लासिकल म्यूजिक से इतना, बहुत छोटी थी मैं, लगाव नहीं था। तो वो कहते हैं ना, वो माहौल तो बचपन से ही मिला था। और जब मैं कॉलेज के लिए हिंदुस्तान आई तो सोफिया कॉलेज में सब लड़कियों को पकड़ के मैं कहती थी मेरा गाना सुनो, जबरदस्ती, क्योंकि सीखा नहीं था कुछ, सारे गमा का कुछ पता ही नहीं था, तो ऐसे गाती थी। और उसमें से मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के लिए चली गई, लड़कियों ने मेरा फॉर्म भर के, और वो मैं कॉन्टेस्ट जीती और वहां से एक किस्म से ये यात्रा शुरू हुई।
0: अच्छा, तो यानी ये हम माने कि जैसे किसी को मंत्र दीक्षा दी जाती ना कान में हौले से, तो वैसे ही संगीत की पहली जो दीक्षा थी मंत्रों की, वो तो आपको घर में
1: मिली? घर में मिली, बिल्कुल सही।
0: लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जाकर के शुरू हुआ। अच्छा, लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए तो आपकी ये जो यात्रा है या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और अच्छाइयां आ जाती हैं, तो संगीत में आपके भी कोई गुरु रहे?
1: जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा और कहते ना पता चला कि ये कॉन्टेस्ट जीती है, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया और कहते ना पब्लिक आई में एक किस्म से आना। तो कल्याण जी आनंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कल्याण जी आनंद जी नाइट, और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग भवन में ये प्रोग्राम हुआ था, तो मेट्रो तक, कहते ना गाड़ियों की, लोगों की उस जमाने में क्यू थी। उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल गया।
0: अच्छा।
1: और लता जी भी वहां थी और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इनवाइट किया। एंड आई वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी। और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई, तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर और कल्याण जी भी आ गई डेट लेने के लिए, और तो उन्होंने कहा कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो ये ड्यूएट गाना है। आप यकीन माने वहां से मैं कल्याण जी भाई के म्यूजिक हॉल पे गई और वहां आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया, फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहां।
0: वाह वाह, भाई ऐसा है,
1: कहां से कहां ये बात देखिए।
0: आपने जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहां, लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है, तो क्यों ना हम ये गाना।
1: ये तो आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा और यहाँ से एक किस्म से फिल्म यात्रा शुरू।
0: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो गाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छुएं और उन पर दस्तक दें।
1: सुनाइए।
2: दिल लेके जाते हो कहां, हम तो खड़े हैं यहां,

0: क्या है तुम्हारा जिसने पुकारा उसी पे दिन लगे जाओ।
1: दिल लेके जाते हो कहाँ।
2: तो कमल बारोट जी, इस तरह से आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई
3: जी।
2: लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रही थी और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
3: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है। मैं आप बताऊं, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे, कल्याण जी आनंद जी। तो जब मैं रिकॉर्डिंग के दिन में गई वहां, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी
2: लेवल पे
3: बैठ के गाना, तो वो देख समझ गई। वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी देखो कमल, जब मैं जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मेरा ये आज इम्तहान का दिन है, और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना एटीज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, अकेली मुझे छोड़ना जाना, बराबर की लाइनें थी और म्यूजिक भी म्यूजिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा।

0: जहां तक हौसला अफजाई की बात है, जैसे अभी आपने बताया कि लता जी ने आपका हौसला बढ़ाया, आपको ढांढस बनाया, इसमें घबराने की कोई बात नहीं
1: जी, जी।
0: तो ऐसे और भी कलाकार होंगे, गायक गायिकाएं
1: जी। अब आप रवि साहब को ले लो, कितने बड़े महान कलाकार थे, उनके साथ जब गाते थे तो वो भी वही अंदाज से पेश आते थे और माइंड इतना ईज कर लेते थे और माहौल ऐसा बना के रखते थे कि जैसे गाना रिकॉर्ड हो जाता। तो मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने तकरीबन सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ गाना गाया है और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह ये पेश आए हैं।
0: कमल जी, आप जिस जमाने का जिक्र कर रही हैं, कुछ देर के लिए हम भी उसी जमाने की तरफ जाना चाहते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। आप जिस जमाने में पार्श्व गायन के क्षेत्र में सक्रिय थी, उस दौर को आप किस रूप में याद करते हैं?
1: एक ऐसा दौर था कि जो गान बनाने वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी जैसे कोई रिसर्च करते हैं ना, वो भी डेडिकेटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और जो गाने वाले थे

0: तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी क्योंकि माहौल ही ऐसा था
1: जी, इतना पेशेंस थे लोग और उसमें और बारीक से बारीक काम जितना तराश सके।
0: जो इंग्लिश में कहते हैं ना, पेस भी थोड़ा स्लो था, जिंदगी का पेस मजा था एक, यू नो, जिंदगी का कहते हैं ना, हर चीज में डिस्कशन वो लेवल पे, रिहर्सल हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी, फिर स्टूडियो में जाते थे, फिर वहाँ म्यूजिशियन के साथ पूरा गाना खड़ा रह के गाना।
1: रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है।
0: जी जी,
1: तो उस जमाने में आप लोग कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे, कितने दिन तक? हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है, एक गाने के बारे में बताया है।
0: जी, कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया, वैसे तो उसमें मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी, जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद करके, वो बहुत कड़क माने जाते थे और उनको बड़े बड़े सिंगरों को, मंझे हुए आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की जरूरत पड़ती थी, मैं तो एकदम नई थी, मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराएं, और रिहर्सल होता था, बकायदा होता था।
1: तो चलिए इसी बात पर एक, अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनना है?
0: अभी आप सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादी अम्मा मान जाओ।

0: बताया, आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, रिहर्सल के लिए साथ में गए थे। तो मैंने ऐसे मजेदार एक वाकया सुनाती हूँ। मैंने कहा देख मुझे मंडे जाना है, अपना अहमदाबाद में एक कॉलेज का फंक्शन है। तो कहती थे सब कौन चल रहा है, तो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ शायद कोई फैमिली मेंबर चलेगा, मैं चलूं? मैं कहा तू कैसे चल सकती है, तू तो इतनी मशहूर सिंगर है, तुझे सब पहचानेंगे। कहने लगी नहीं चलते, मजा आएगा, मैं कोकिला बहन बन के आऊंगी। यकीन मानो मेरे साथ आई, उस जब इतनी बड़ी कॉलेज में फंक्शन में मैं गा रही हूँ, मेरी किताबें लेके बैठी है। अब बोली आज कैसे, ये माहौल कैसा था, है कि नहीं मजेदार। और किसी ने पहचाना भी नहीं, वो ऐसे चुपचाप बैठी रही, मुझे हंसी भी आए और मुझे बोलती रहती चुप बोलो बोलो मत। तो उतने में गुजरात के बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश व्यास आए और उन्होंने देखे, बोले आशा तुम यहाँ? फॉरन प्रिंसिपल कॉलेज स्टूडेंट सबको पता लग गया आशा भोसले बैठी है। बड़ा मजा आया, लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है।
1: और आपकी ये दोस्ती
0: अभी भी कायम है? अच्छा। जी हाँ।
1: तो अब जब आप आती हैं तो मिलती हैं अपने पुराने दोस्तों से, जो मतलब जो भी आती
0: बिल्कुल बिल्कुल वही हमारे वही ग्रुप है बस जिसके साथ ये यात्रा शुरू की थी, बिल्कुल अभी तक वही फ्रेंडशिप है। बहुत अच्छे लोग हैं, मुश्किल से जिंदगी में अच्छी कहते हैं ना मित्रता मिलती है।
1: कमल जी मैं समझता हूँ कि मातृभाषा तो आपकी गुजराती
0: जी,
1: लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी गानों की बात हो रही है, तो हिंदी से हटकर भी आपने दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए गीत गाए?
0: जी मैंने गुजराती फिल्म के लिए गाना गाया, फिर अपना भोजपुरी पंजाबी और गुजराती फिल्म के लिए तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 साल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड मिला।
1: अच्छा
0: जी हाँ। फिल्म बनी थी लीलूड़ी धरती, फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन गुजराती जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने दिया था, और उसका एक गाना था मारू नाम पाड़ियों छे संतूरंगीली। अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे, इतना मशहूर हुआ था ये गाना।
1: लेकिन एक चीज है
0: जी,
1: आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी आपने सिर्फ एक लाइन बनाई है। अच्छा वैसे
0: हाँ।
1: बहुत अच्छा लगा,
0: अच्छा लगा
1: और बहुत देखिए ऐसा अच्छा है कि मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे वो गानों में
0: बहुत शुक्रिया
1: हमेशा खुलेगी। कमल जी ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, आप इस बारे में क्या कहेंगे?
0: नहीं बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीजों को उभार के ला सके, और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका मकसद पूरा होता है, और ये आना चाहिए तभी आके गाने की सफलता हो सकती है।
1: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करती
0: थी? शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रो आवाज थी, और शायद वो क्वालिटी के क्लियर कट आवाज है, एकदम सीधी सादी आवाज है, उसमें कोई वो बात नहीं थी। तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो, तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कण मुरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब जो कि गजलों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में, तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक खास रियाज चाहिए, तो कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे। तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई, और इन ये सब, और उसके बाद एक गुरु आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खान साहब गुलाम मुस्तफा खान साहब, तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी और इन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप रात को 7 बजे एक गाना होने वाला है फिल्म बादशाह का, गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी।
1: अच्छा।
0: वो भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था। तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, हाँ, वो मूड भी बना लो, वो आवाज भी अच्छी रखो, वो म्यूजिक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ, आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूंगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी, तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद गाने बजाता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
1: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे, लेकिन लग रहा कि पूछ ही लेना चाहिए। वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद, एक गाने के लिए आपको, मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
0: मुझे 300 रुपये मिलते थे। उस जमाने में जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे, तो हमको आधे मिलते थे और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा, कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था, और मैंने ड्यूट ज्यादा गाए हैं, तो मैं, हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया और कहा कि कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना। हम उससे, हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस जमाने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी, बनिस्बत के गाना अच्छा मिले।
1: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिस पर बात करें, मैं सोचता हूँ कि हर कलाकार में, आप ही क्या, सभी की, मतलब तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे?
0: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गए हैं।
1: अच्छा
0: जी।
1: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला, वो कौन सी थी?
0: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारसमणि का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा, कहते हैं ना, टॉप पे रहा काफी दिनों तक। और यहीं जहां भी मैं गई, मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना। जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, स्टैफ्रिका गई मैं, जिम्बाब्वे गई, तो कहते थे आपका ही गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है।
1: और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता है, तो आज एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से
0: जरूर सुनाइए।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी खेली है और आज भी उनकी पारी चल रही है। उनके साथ आपने कितनी फिल्में नाजम की होंगी?
1: उनके साथ भी मैंने काफी गाने गाए हैं और पारसमणि का गाना है उसके बारे में ये कहूँगी, ये फिल्म भी म्यूजिक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है।
0: तो देखिए, उस जमाने का तो ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते थे तब गाने देख लिया करते थे और सुनिए
1: बाद में रेडियो पे सुनते
0: थे, बाद में रेडियो पे सुना करते थे। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहेंगे, फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में रेडियो का कितना हाथ रहा?
1: बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि रेडियो के जरिए मुझे लोगों ने, मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिली। कैसे? जब मैंने ये आपको शुरू में जिक्र किया कि मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई, तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फुलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो, और उस प्रोग्राम में मुझे सुधा मल्होत्रा को और महेंद्र कपूर को, बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उसमें हमें बुला के इन्होंने काफी गवाया और हमारा नाम, कहते हैं ना, रेडियो के जरिए बहुत ही मशहूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ, बट पहले रेडियो ने हमें ये पॉपुलैरिटी दी। हाँ, तो रेडियो तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।
0: आप वाकई गायिका बनना चाहती थी या कुछ और?
1: एक्सीडेंटली हो गई। नहीं, गाने का शौक था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मेरी जिंदगी में शायद गायिका बनना था। और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला।
0: पछतावा तो नहीं?
1: बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।
0: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए, क्या बनना चाहेंगे
1: आप? तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी।
0: अच्छा, आज जबकि मैं सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुकी हैं
1: जी,
0: तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?
1: जी मैं बैठ तो नहीं सकती, जरूर मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है। मेरी जिंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई। मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं। पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद पार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ की गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है। और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध।
0: तो कैसा काम चल रहा है यार?
1: अच्छा चल रहा है, अब भी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है।
0: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है और ये एकदम अलग, इस फील्ड में मजा रहा
1: है? हाँ, आपको बताओ, मेरा जो भाई है ना वो डायरेक्टर है, चंद्रा बारू, जिन्होंने डॉन बनाई थी, और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं, अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है। कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे, और इसके भी एक मजेदार कहानी है। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है, और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना, शिव कुमार शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने संतूर बजाया है, राम नारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे, और ये गाना भी लोगों ने बहुत पसंद किया। सुनिए।

0: कमल बारोड जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं
1: जी,
0: आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी
1: जी,
0: और फिल्मों में गीत संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो जरा अलग हट करके हैं, उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए, हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में, फोकलोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की, और अब आप अगर संगीत देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो आप, नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूजिक में एक बात है हर जगह की, तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है, और इसी वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ हमारा संगीत सब जगह सुना जाता है, कुछ तो कशिश है उसमें। मेरा एक ऐसा एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में, मैंने जैसे कहते हैं ना गोपी कृष्णा और सितारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में, 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई, और उस जमाने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ, तो जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गजल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौशाद साहब के हाथ से कराया था, और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गजलों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला।
0: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है,
1: अच्छी बात है ना। और मुझे, मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहाँ के ये मायने मेरे चार गाने किए, और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज अहमद फैज, नदीम कासमी, अली रजा और अहमद फराज। यहाँ मैं चाहूंगी कि ये मेरे पतिदेव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप जरूर सुनवाइए, फैज अहमद फैज की रचना, और बोल है, आज यूं मौज दर मौज गम थम गया।

0: करुण बारोट जी, आपने बहुत सारे गीतकारों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
1: इंदिवर जी से। इंदिवर जी बहुत ही अच्छा लिखते थे और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं कहीं डिनर में मिलते थे तो हम इंदिवर जी को कहते थे, आप फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो खास चीजें आपने लिखी जो छुपा के रखी है वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए। और वो आप तजुब करेंगे, ऐसी ऐसी रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारे तो शाम बन जाते थे। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ते थे, उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे, लेकिन उनकी प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं।
0: मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी कभी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गजलों को ज्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीतनुमा गजलें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गजल कहा जाए उसमें जब तक कुछ मुश्किल थोड़ी बातें ऐसी ना हो, बोलों की भी सुंदरता हो, रागों का भी उसमें जो ढलना प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ, वो मुझे बहुत आनंद देता है।
0: ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है और तृप्ति नहीं होती, और इसीलिए अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का एक और बढ़िया सा गीत आप हमारे सुनने वालों की नजर करें।
1: आनंद जी भाई ने मेरे लिए चार खास गाने कंपोज किए थे, इंदिवर जी ने लिखे थे, और उसमें से एक गाना सुनाना चाहूंगी, प्यार भरा दिल तोड़ गए।

0: कमल बारूड जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
1: कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरी भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी, मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे, तो 2 गाने एक तरफ था, फिर शाम को आके 2 गाने यहाँ किए, और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफी साहब थे, मुकेश जी थे, और मैं फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था, और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे, मुझे कहते थे कि, अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, उसमें से मेरा चेहरा लाल हो जाता था, और हमेशा छेड़ते रहे। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने अच्छे वो इंसान थे।
0: शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का
1: जी,
0: के आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी ग्रामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की परंपरा भी आपने शुरू की
1: जी।
0: तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है, और क्या अभी भी आप?
1: 35 साल से चल रहा है भैया। हमें मॉरिशस गई थी, तब मैं कहते हैं ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए, और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं विजिट करते हैं, उनको पता है कितना छोटा आइलैंड है, 40 माइल्स लॉन्ग आइलैंड है। उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था, लेकिन एक था कि नहीं इंडियन और क्लासिकल डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया, बाकायदा चीजें मैंने शो की तैयारियां होती थी। आजकल का शो उस जमाने का शो में ये फर्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं, उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के, फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उन पे करा के वो गाने हम वहां पेश करते थे।
0: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूत का काम बरसों से कर रही हैं।
1: बड़ी अच्छी बात कही आपने,
0: इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को
1: कोशिश कर रही है।
0: तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुके होंगे, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
1: जी मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम ईस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छी कलाकार के साथ।
0: कैसे रिस्पांस रहता है लोगों का?
1: बहुत अच्छा रहता है, और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आरडी बर्मन और आशा जी को लेके गई थी, और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहाँ बात लेजर और सब पहुंच गई है, हमने इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहाँ पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहाँ आए हुए थे, और सब शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे, आई थिंक इट वॉज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नशा है, स्टेज का एक नशा है अच्छी चीज पेश करने का है। और आरडी भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, यू नो।
0: कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जिंदगी में, और खास तौर से जब वो कलाकार हो तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में उसमें और आगे जा सके।
1: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा है, और इसीलिए मैं ज्यादातर 6 महीना यहाँ 6 महीने वहां रहती हूँ। इसका यही कारण है कि वो कहते हैं

0: कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी कहते ना हमारी एक्टिविटीज रखी, और अभी भी वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी खुशी वहाँ मेरी खुशी।
1: और ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया
0: जी,
1: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन कौन से हैं?
0: बहुत सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ, और बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था, और कुकिंग का इतना शौक नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं तो समझे ना, तो और कुछ बनाने का कुछ कहते हैं ना क्रिएशन का शौक है, बस स्टेज पे करूं मैं या स्मॉल स्क्रीन पे करूं या खुद गाऊं, अगर आवाज साथ नहीं देती हूँ तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूँ कि जहां मेरे मन को एक कहते ना खाना मिले।
1: तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का
0: जी,
1: तो वहाँ कौन सी जगह जहाँ आपका बचपन बीता है, क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
0: जी मैं दार इस्लाम की रहने वाली हूँ, और आपको बताऊँ कि दार इस्लाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग तहिती बहामा छुट्टियों में जाते हैं ना, हमारी वहाँ का जो हमारा समुद्र है नीला पानी सफेद पाम ट्रीज, एक किस्म से स्वर्ग है वो, इतनी खूबसूरत जगह है।
1: कमल जी फिल्मों में तो आपने गाया ही, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए।
0: बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने, पहले तो यहाँ मैं ये जिक्र करूंगी कि मेरा पहला LP म्यूजिक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था, और वो LP का नाम था झनकार, उसमें 8 रचनाएं थी। और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था आदाब, जो शेखर सन ने म्यूजिक दिया था, उसकी एक रचना आप सुनाइए, और बोल है निगाहें नीची किए।

0: कंवर जी, जिंदगी में पुरस्कारों का, प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है, वाहवाही का, शाबाशी का, इन सब की अपने अपने महत्व है
1: जी।
0: तो आपको पुरस्कार भी मिले होंगे और उपलब्धियां भी रही होंगी जिंदगी में।
1: ढेर सारे मिले हैं, बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे ख्याल में गलत व्यक्ति को इन्होंने दे दिया है, लेकिन मिला जरूर है मुझे। मैं 5 साल की थी तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जब मैं दार स्लम में थी तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था। फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे साइकिल कॉन्टेस्ट में मुझे बड़ी शील्ड मिली, और वो भी एक किस्म का प्राइज था। फिर सुरसिंगार संसद की तरफ से फिल्म तानसेन बनी थी, जिसमें मैंने महेंद्र कपूर के साथ एक क्लासिकल ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और लीलोड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
0: अब चूंकि ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है
1: जी,
0: आप क्या कहना चाहेंगे? कोई बात मन में रह गई हो जो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हैं?
1: जी, मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं, शायद और भी मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए। जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे, ऐसा ही प्यार अब भी दीजिए, तो शायद कुछ और गाने गाने का मेरा दिल करेगा और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूं।
0: क्या बात है, इस वक्त तो आपके किसी गीत में खोने को जी चाहता है।
1: बॉम्बे में जब भी मॉनसून का मौसम होता था, काले काले बादल मुंबई शहर पे आ जाता था, तो आपका रेडियो स्टेशन ये गाना जरूर बजाता था और वो गाना है गरजत बरसत सावन आयो।

0: कमल बारोड जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए, सेलुलॉइड के सितारे के लिए वक्त दिया और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपके प्रति कि जो सक्रियता आपने कला के क्षेत्र में अभी भी बनाए रखी है वो इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से आपको सफलताएं मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, इतना सारा मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के सामने फिर से बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।

0: सेलुलॉइड किस्तारी कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था माणिक राव गायकवाड का और विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे।

0: ही आप जानती हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को युवा पुष्पेंद्र बोहरा का युवा नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं विश्व निष्पक्ष खेल दिवस पर। दोस्तों, 2025 में शुरू होकर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 मई को अलग रूप से विश्व निष्पक्ष खेल दिवस घोषित किया। इन निर्णय खेलों की भूमिका को वैश्विक स्तर पर मान्यता देना, जिसमें शांति, समावेशन और न्याय को बढ़ावा देने जैसी शक्ति निहित है। कई सदस्य देशों के समर्थन से घोषित यह नया दिवस इस बात को रेखांकित करता है कि केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, बल्कि एकता, अनुशासन और सम्मान को बढ़ाने का एक प्रभावशाली साधन भी है। इस दिवस की स्थापना इस गहरी समझ से हुई कि खेल और शारीरिक गतिविधियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, ये समुदाय के बीच पुल का कार्य करती है। विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं के बीच अनुशासन, धैर्य और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना खेल नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता की बाधाओं को तोड़कर साझा मानवीय मूल्यों को सामने लाते हैं। इस विचार का ऐतिहासिक उदाहरण 1995 में दक्षिण अफ्रीका जब रग्बी समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने रग्बी विश्व टीम कप को राष्ट्रीय मेल मिलाप का मंच बनाया। उन्होंने स्प्रिंग बॉल्स टीम का समर्थन किया, जो पहले श्वेत अल्पसंख्यक की प्रतीक मानी जाती थी, और इस कदम से एक गहरे विभाजित राष्ट्र को एकजुट करने में मदद मिली। इसके साथ ही 2024 में इसे अपनाया गया था। यह स्वयं ओलंपिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक है। इस प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्ष खेल समिति की भूमिका को भी सराहा गया है, जो हर स्तर में नैतिक और आचरण को बढ़ावा देती है, चाहे वह स्थानीय मैदान हो या अंतर्राष्ट्रीय मैदान। साथ ही अपनी चर्चा को हम इसी तरह जारी रखेंगे, उससे पहले ये सुनते हैं यह संदेश।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं वर्ल्ड फेयर प्ले डे पर। दोस्तों, फेयर प्ले मार्गदर्शक सिद्धांतों के एक महत्वपूर्ण समूह को संबोधित करता है जो खेल और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों में नैतिक आचरण, सम्मान और अखंडता को बढ़ावा देता है। यह केवल नियमों का पालन करने से परे नहीं बल्कि प्रतिभागियों के बीच ईमानदारी, सहयोग और समानता की भावना को प्रोत्साहित करता है। इसे सामाजिक सामंजस्य और शांति को बढ़ावा देने में एक मौलिक तत्व के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG को प्राप्त करने के प्रयासों में भी एक रेखांकित विषय है। विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, कम असमानताओं और शांतिपूर्ण समाज के क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA ने अपने 78वें सत्र ने 1 जुलाई 2024 को संकल्प लिया कि इसको अपनाना। अधिक तौर पर 19 मई को विश्व मेला खेल दिवस के रूप में नामित किया गया। विश्व फेयर प्ले दिवस को मान्यता देने की पहली हंगरी द्वारा की गई और 52 देशों राज्यों में इसे सह प्रोत्साहन प्राप्त किया। प्रस्ताव ओलंपिक अर्थात मैं नहीं तो निष्पक्ष खेल की भावना को स्वीकार करता है और शांति, विकास और सामुदायिक सामंजस्य को बढ़ावा देने में विकलांगता को सहित खेलों को महत्व पर जोर देता है। वर्ल्ड फेयर डे के संयोजन में 30वीं यूरोपियन फेयर प्ले कांग्रेस और यूरोपियन फेयर प्ले मूवमेंट की महासभा 16 मई से 25 मई 2025 तक ग्रीस में प्रांची ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी में आयोजित की गई। इस पुरस्कार ने सभी व्यक्तियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने ईमानदारी, समानता और अखंडता के मूल्यों को उदाहरण दिया। साथ ही अपनी चर्चा को हम इसी तरह रखेंगे, उससे पहले ये लिए चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं यह गीत।

साथियों अभी हम सुन रहे थे फिल्म अब तेरे दिल से, और जो फिल्म से गाना जैसे गाए कुमार सानू अलका संग। साथियों हम चर्चा कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी पुण्यतिथि पर। दोस्तों भारत के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी का आज मंगलवार को जयंती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव ने पूर्व राष्ट्रपति नीलम रेड्डी को उनकी जयंती पर स्मरण करते हुए नमन किया। संसद सदस्यों, पूर्व सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सभा के अध्यक्ष और महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने भी इस अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथियों अपनी चर्चा को हम ऐसे जारी रखेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

साथ ही अभी हम सुने थे फिल्म दिल का क्या कसूर से टाइटल सॉन्ग, जिसे गाया कुमार सानू ने और संगीत दिया है नदीम सरवन ने। दोस्तों अब समय हो चला है अपने युवा दोस्त पुष्पेंद्र भौरा को आ कह दीजिए नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 6 बजे हैं। आइए डालते हैं एक नज़र इस सभा के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा पर।

श्रोताओं, रात्रि 11 बजे सुनिएगा पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 9 बजे सुनिएगा न्यूज़ @9।

हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों को आप सुनेंगे शाम 6:30 और 6:45 पर, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

किसान भाई अपना पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी सुनेंगे शाम 7 बजे। फिल्म संगीत के कार्यक्रम को सुनिएगा शाम 8 और रात्रि 9:15 पर।

राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम को सुनिएगा रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम शाम ए गजल।

श्रोताओं, ये थी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस का अंत।

पवित्र चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर का समय, भगवान का अभिजित मुहूर्त था, जब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा समेत सभी देवता विमान सजाकर अवधपुरी के आकाश पर छा गए।

హృదయ హర్షిత సుఖభాయ జాదినతే హరి గర్వహి ఆయ సకల లోక

एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 6:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

साला सर दरबार थारो बजरंगी बाबा बजरंगी थाने टाबरिया की पीड़ मिटाया सर से थाने टा

0: निर्धन निर्बल थारे आगे शीश झुकावे,
1: आगे शीश झुकावे।
0: भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जो थाने नित ध्यावे।

0: दुख हरो, दारिद्र हरो, ते कष्ट हरो बालाजी,
1: हरो कष्ट हरो बालाजी।
0: रोग शोक सब दूर करो, ते सुखी करो बालाजी।

0: पवन पुत्र है राम दूत थर सारी दुनिया आवे
1: थारे सारी दुनिया आवे
0: थारा दर्शन करे चाव से महिमा थारी गावे
1: महिमा थारी गावे
0: ओ नैया मारी ओ नैया मारी पार लगाया सरसी हमें भगता की पीड़ मिटाया सरसी हमें

0: अपनी शरण में लेना, मैं दास तुम्हारा जन्म से हूँ, मैं दास तुम्हारा जन्म से हूँ।
1: श्रोताओं, इसी के साथ भक्ति संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 101.8 MHz पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में, फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया आप प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों से राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने से अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस वर्ष अगस्त तक 500 ई बसें चलाई जाएंगी और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। अगले एक सप्ताह तक सीमावर्ती क्षेत्रों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान को देश भर में महत्वपूर्ण खनिजों का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में आज मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य को कोयले की निर्बाध आपूर्ति, तकनीक आधारित खनन और खनिजों के बेहतर दोहन सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार के दूरदर्शी नीतियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण देश के खनन क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों और निवेश अनुकूल वातावरण से राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। श्री रेड्डी ने बताया कि रक्षा, सौर ऊर्जा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इन खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने की क्षमता राजस्थान में है। उन्होंने खनन से जुड़े मुद्दों के समयबद्ध समाधान पर जोर दिया, जिससे प्रदेश में निवेश और उत्पादन बढ़ सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने बाड़मेर और बालोतरा के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध रेयर अर्थ एलिमेंट्स के दोहन और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण से राज्य में चिन्हित साइट्स की जानकारी साझा करने को कहा, ताकि इस भूमि का उपयोग अन्य कामों में नहीं किया जा सके। बैठक में कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के संयुक्त उपक्रम तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक और राज्य स्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता ने प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद राज्य के सभी टर्मिनल, डिपो और रिटेल आउटलेट पर पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। श्री गुप्ता ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की आपूर्ति भी पूरी तरह से सामान्य है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों प्रमुख तेल कंपनियां मिलकर वितरण व्यवस्था पर लगातार नजर रख रही हैं। उन्होंने आमजन से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने, घबराकर अनावश्यक खरीदारी नहीं करने और ईंधन की उपलब्धता के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने का आग्रह किया। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने आज झुंझुनू प्रवास के दौरान लोगों से ईंधन बचाने की अपील की।
1: ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रिपोर्टें होती है और निश्चित रूप से मुझे ये बात कहनी, प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि हमें तेल बचाना है और ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बढ़ा

0: से हित में है। तो आप इन्हें का प्रधानमंत्री ने कितने कपड़े काफिले में कम किया है, हमारा भी बहुत बड़ा काफिला हो सकता था, लेकिन मैंने भी काफिले में मना किया, हमारी ज्यादा गाड़ी साथ नहीं देते। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि राष्ट्र हित में है और ये सारी चीजें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है, लेकिन फिर भी कंट्रोल करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने और राज्यसभा ने उसके ऊपर निश्चित रूप से काम किया और आगे भी उनसे पीछे इसका अच्छा देखने।
1: इस बीच आज सवाई माधोपुर जिले में 11 पेट्रोल पंप्स और माप तौल में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद आज उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान एक पेट्रोल पंप पर 5 लीटर की आपूर्ति पर 30 मिलीमीटर पेट्रोल कम देना पाया गया, जिसके बाद संबंधित पंप के नोजल सीज कर दिए गए। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए हैं और 4,500 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने एकजुट राष्ट्रीय कार्रवाई के तौर पर सैन्य सटीकता, सूचना नियंत्रण और कूटनीतिक संदेश तथा आर्थिक संकल्प को एक साथ पेश किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने गहराई तक वार करते हुए आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया, एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को तोड़ दिया। सेना प्रमुख ने ये बात नई दिल्ली में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि की ओर सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कही। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारत को शांति सुनिश्चित करने, विकास की गति को तेज करने और वैश्विक माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी राष्ट्रीय शक्ति का इस्तेमाल रणनीतिक सूझबूझ के साथ करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से लावारिस श्वानों को हटाने के अपने पहले के आदेश में किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग करने वाली याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। अदालत ने अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अस्पतालों, स्कूलों और अन्य स्थानों पर कुत्तों के हमलों की घटनाओं को बेहद चिंताजनक बताया गया है। इनका हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि निर्देशों की पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस वर्ष अगस्त तक 500 ई बसें चलाई जाएंगी। इन बसों के सुचारू संचालन के लिए राज्य में 9 अत्याधुनिक ई बस डिपो बनाए जा रहे हैं। आज जयपुर में शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ई परिवहन सेवाओं और बसों की खरीद प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए ई बसों के संचालन से प्रदूषण में कमी आएगी और आमजन को सुगम परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। बैठक में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में भी विस्तार करने का फैसला किया गया। बेड़े में अगस्त माह तक 144 ब्लू लाइन बसें और 30 एसी स्लीपर बसें शामिल की जाएंगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने आज पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर में स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल सुविधा, प्रतीक्षालय और पार्किंग सहित विभिन्न यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। डीआरएम ने अधिकारियों को सुरक्षा मानकों और रेल संरक्षा मापदंडों को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। कोटा के मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए अब सौर ऊर्जा आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वन विभाग की इस पहल से घने जंगलों में स्थित प्राकृतिक आवास और कृत्रिम जल स्रोतों पर बिना किसी रुकावट के 24 घंटे नजर

0: की जा सकेगी। गर्मी के मौसम में वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शिकारियों की गतिविधियों को रोकने में ये प्रणाली बेहतर कारगर साबित होगी। अधिकारियों ने बताया कि इन अत्याधुनिक कैमरों की मदद से वन्य जीवों के व्यवहार का वैज्ञानिक डेटा जुटाने और उनकी टेरिटरी की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी। और अब मौसम। प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों शेखावाटी क्षेत्र और कोटा संभाग में भीषण लू का प्रकोप जारी है। इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है और तेज गर्म हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने और गर्मी में बढ़ोतरी की संभावना है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पारा 44 से 46 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है।
1: आगामी एक सप्ताह के दौरान अभी भी मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच जारी रहेगा। यानी वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और दक्षिण पूर्वी भागों में यानी कोटा संभाग और भरतपुर में भी देखेंगे तो कहीं कहीं तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होगा। या इसके अलावा अगले 3-4 दिन तेज धूल भरी हवाओं का भी प्रभाव राज्य के कुछ भागों में रहेगा। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की
0: तेज गर्मी और हीट वेव को देखते हुए प्रदेश के सभी चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ ही ORS कॉर्नर भी बनाए गए हैं। साथ ही लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीमों की ओर से जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से गर्मी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। लोगों से दोपहर के समय अनावश्यक बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। वहीं विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। IPL क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। ये मैच जयपुर के SMS स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। IPL मैच को देखते हुए जयपुर में यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। कई मार्गों पर यातायात डाइवर्ट रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों से राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस वर्ष अगस्त तक 500 ई बसें चलाई जाएंगी। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। अगले एक सप्ताह तक सीमावर्ती क्षेत्रों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अजय सिंह शक्तावत ने तैयार किया है। चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी में हम बात करेंगे हालिया खबरों की, प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों की, ग्राम रथ अभियान की और भीषण गर्मी और लू से बचाव के उपायों की। चिट्ठी की शुरुआत में सबसे पहले बात क्षेत्र की प्रमुख फसल के बारे में। चित्तौड़गढ़ देश के प्रमुख अफीम उत्पादक जिलों में शामिल है। यहाँ केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की ओर से जारी विशेष लाइसेंसों के जरिए सीमित और वैध तरीके से अफीम खेती की जाती है। हर साल किसानों की ओर से उत्पादित गुणवत्ता के आधार पर सरकारी खरीद और तुलाई केंद्र बनाए जाते हैं। खासतौर पर यहाँ दो तरीकों से अफीम पैदा की जाती है, गम और CPS पद्धति। गम पद्धति में पौधों में चीरा लगाकर अफीम का दूध निकाला और सुखाया जाता है। वहीं सेंट्रलाइज्ड पॉपी स्ट्रॉ CPS पद्धति में बिना चीरा लगाए सीधे डोडो की तुलाई की जाती है। हाल ही में जिले में अफीम तुलाई प्रक्रिया पूरी हुई। नारकोटिक्स विभाग ने 3 खंडों के 756 गांवों के करीब 16,500 किसानों से अफीम खरीदी। इनसे लगभग 1,35,000 किलो अफीम खरीदी गई। इसके लिए पहले और दूसरे खंड के किसानों को लगभग 15 करोड़ 67 लाख रुपए का भुगतान किया।

0: दिया गया। वहीं तीसरे खंड के करीब 1000 काश्तकारों को 5,61,00,000 रुपए का भुगतान हुआ। सीपीएस पद्धति के तहत 684 गांवों के 4,800 किसानों को 5,59,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कामों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने पीने के पानी की समुचित आपूर्ति को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। उन्होंने जिले की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की पर्याप्त और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बंद पड़े आरओ की जल्द मरम्मत करवाने, हैंडपंपों के पास सोखता खड्डे बनवाने और जल संरक्षण के कामों में तेजी लाने की बात कही। जिला कलेक्टर ने भीषण गर्मी के दौर को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रचंड गर्मी के समय लू और तापघात की आशंका रहती है। ऐसे में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और श्रमिक वर्गों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिला कलेक्टर ने कहा कि सरदर्द, तेज बुखार होने की स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें। उन्होंने आमजन को तरल पदार्थों का अधिक सेवन करने की सलाह दी। जिला कलेक्टर ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की। 25 मई से शुरू होने वाले इस अभियान में जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और जल स्रोतों के पुनर्जीवन तथा जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि शहरों के साथ ही गांव ढाणियों तक जल संरक्षण का संदेश पहुंचाया जाए और इस मुहिम में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आदिवासी अंचलों में सरकारी योजनाओं की पहुंच मजबूत करने और जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन दिनों देश भर में जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। इसे जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को जनजातीय समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संवेदनशील प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय की समस्याओं को प्राथमिकता से सुना जाए। जिले के 7 ब्लॉकों की 76 ग्राम पंचायतों के 158 आदिवासी बहुल गांवों में ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आदि सेवा केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ प्रवास पर रहे। उन्होंने बेगू के जोगणिया माता मंदिर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। श्री बिरला ने राजपूत समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शिरकत की। उन्होंने सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इससे फिजूल खर्ची पर लगाम लगती है, साथ ही एकता और भाईचारे की भावना में भी मजबूती आती है। जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से करीब 91,000 से अधिक प्रकरण निस्तारित किए गए। इनमें लगभग 11 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी कहो राज्य सरकार रे साफ नीतियां राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स रा खास केंद्र रातौर सामी आ रहे है। सुप्रीम कोर्ट टीका लगायोड़ा या नसबंदी करोड़ा लावारिस कुत्ता ने आश्रय स्थला माय राखण रा पहली रा हुकम ने पाछो लेवण नट्यो। प्रदेश माय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ने पर्यावरण अनुकूल बनावण सारू ई साल अगस्त महीना ताई 500 ई बसा चलाई जावेला। और राज्य रा घणखर हलका माय जबरदस्त गर्मी और लू रो असर। आवता एक सप्ताह ताई सरहदी हलका माय पारो 44-46 डिग्री सेल्सियस बीच रहवण री शंका। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे बस समाचार विगतवार। प्रदेश ने क्रिटिकल मिनरल्स रो खास केंद्र बनावण सारू केंद्र और राज्य सरकार मिलर काम करेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी री मौजूदगी माए आज जयपुर माए मुख्यमंत्री रा रहवास माथे राखी जी आला दर्जारी मीटिंग माए ओ फैसलो करीचियो। मीटिंग माए मुख्यमंत्री बाड़मेर और बालोतरा रा सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद रेयर अर्थ एलिमेंट्स से जुड़ियो नोडल

0: अधिकारी नियुक्त करण रा हुकम दीना। वे भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण रा अहलकाराओं राज्य में पिछाण करी जी थोड़ा नी जानकारी देवन बाबत कहो। ई मौके केंद्रीय मंत्री रेड्डी कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री आगेरी सोच नीतियां और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रे कारण देश माए जमी हेतु खनिज निकालवा रा हल्का माए घणो सुधार थियो है। वे कहो के राज्य सरकार री साफ नीतियां और निवेश रे अनुकूल वातावरण राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स रा खास केंद्र रा तौर सामी आ रियो है। श्री रेड्डी कहो के राजस्थान माए रक्षा सूरज री रोशनी बिजली बनावण और मोटर गाड़ियां बनावण रा हल्का माए आ खनिजां री बढ़ती मांग पूरी करण रो बूतो है। वे प्रदेश माए निवेश और उत्पादन बढ़ावण सारू खनन नु जुड़िया मुद्दा रा टीम सर निपटारा माथे जोर दीनो। तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रा कार्यकारी निदेशक और राज्य स्तर रा समन्वयक मनोज गुप्ता प्रदेश माए पेट्रोल डीजल और रसोई गैस री लगातार पूर्ति रो भरोसो दिरायो है। वे बतायो कि दुनिया माए मौजूदा हालात रे कारण उपजी अनिश्चितता रे बावजूद राज्य रा सगला टर्मिनल डिपो और पेट्रोल पंप माथे तेल रो पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। श्री गुप्ता कहो कि घरेलू ग्राहकां सारू रसोई गैस री पूर्ति सामान्य है। वे जनताओं अफवाहां माथे ध्यान नी देवन री अरज कीनी। ई बीचे पहली वाला केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी आज झुंझुनू जिला माए जनताओं ईंधन बचावन री अपील कीनी।
1: ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए होती है और निश्चित रूप से मुझे ये बात कहनी, प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि हमें तेल बचाना है और ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से फ्रांस के हित में, तो आपने देखा प्रधानमंत्री ने कितने कपड़े काफिले में कम किया है। हमारा भी बहुत बड़ा काफिला हो सकता था लेकिन मैंने भी काफिले में मना किया, हमारी ज्यादा गाड़ी साथ नहीं गए, तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि राष्ट्र हित में है और ये सारी चीजें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है, लेकिन फिर भी कंट्रोल करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने और राज्य सरकार ने उसके ऊपर निश्चित रूप से काम किया और आगे भी निश्चित रूप से इसका अच्छा देखने।
0: इन बीच सवाई माधोपुर जिला में पेट्रोल पंप माथे कम तेल देवन री शिकायत पाछे नाप तौल विभाग रा जांच दल जिला रा 11 पेट्रोल पंप री जांच कर जरूरी कार्रवाई कीनी। आ पेट्रोल पंप माथे कम तेल देवन मिलिया पाछे संबंधित पंप रा नोजल सीज कर दिया चा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो है कि ऑपरेशन सिंदूर रा तहत एकजुट राष्ट्रीय कार्रवाई रा तौर फौजी सटीकता सूचना नियंत्रण कूटनीतिक संकेत और माली संकल्प ने एक सागे पेश करी चिया। सेना प्रमुख नई दिल्ली में सुरक्षा से समृद्धि की ओर सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर मुद्दा माथे राखी जा सेमिनार में बोल रहा है। वह कहो कि ऑपरेशन सिंदूर रा तहत गहराई ताई वार करता थका आतंकी ढांचा ने नेस्तनाबूद करिया पाछे सोच समझ हर एक मकसद रा तहत रोकी चियो। जनरल द्विवेदी कहो के शांति तय करण विकास की रफ्तार तेज करण और दुनिया माए माहौल ने आपरा पक्ष माए करण सारू देश री ताकत रो इस्तेमाल रणनीतिक सूझबूझ सागे करनो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जनता री आवन जावन री ठोड़ाओ लावारिस कुत्ता ने हटावन रा लारला हुकम माए किनी भांत री राहत देवन नटकियो है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ री सदारत वाली पीठ अदालत रा ई बारा माए नवंबर 2025 माए दिया जा हुकम माए बदलाव री मांग करण वाली अर्जियां आज खारिज कर दीनी। अदालत एड़ा कुत्ता ने आश्रय स्थल माए राखण रा हुकम दीना। अस्पताल स्कूल और दूजी ठोड़ा कुत्ता कानियों हमला करण रा वाकया रो हवालो देता था का पीठ कहो के हुकम री पालना नी करण वाला अहलकारा ने अदालत री अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई रो सामो करनो पड़ सके है। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ने बेहतर और पर्यावरण अनुकूल बनावण सारू अगस्त महीना ताई 500 ई बसा चलावण रो प्रस्ताव है। इसारू मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत माए आज जयपुर माए समीक्षा मीटिंग राखी जी शिणमाय ई परिवहन सेवावां और बसा री खरीदी रा काम री प्रगति रा बारा माए चर्चा करी जी। मीटिंग माए बताई जियो के अगस्त महीना ताई राजस्थान रोडवेज ने 144 ब्लू लाइन बसां और 30 एसी स्लीपर बसां मुहैया करावन री जानकारी दी री जी। ए बसां चलावन सारू प्रदेश माए 9 नुआ ई बस डिपो ही बनाया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे माए जोधपुर मंडल रा रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन रो दौरो कर व्यवस्था में री जानकारी लीनी। वह स्टेशन परिसर में साफ सफाई री व्यवस्था पीवन रा पानी प्रतीक्षालय और गाड़िया उभीकरण री ठौर समेत मुसाफिरान ने मुहैया कराया जावन वाला न्यारा न्यारा सुविधा रो बारीक जायजो लीनो। DRM पाली मारवाड़ जोधपुर बीच विंडो ट्रेलिंग री जांच कर न्यारा न्यारा स्टेशन माथे हिफाजत जुड़िया काम रोई जायजो लीनो। कोटारा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में जनावरों की हिफाजत और निगरानी तंत्र ने मजबूत बनावन सारू अब सूरज री रोशनी मड़ी बिजली चलने वाला CCTV कैमरा लगाया जा रहा है। इनु घना जंगलों में पानी रा कुदरती और इंसान कानियों बनाई गया स्रोता माथ 24 घंटा बिना रुकावट नजर रखी जा सकेला। अहलकारों ने मुजब नुआ कैमराओं वन विभाग रा फील्ड स्टाफ ने जनावरों रा व्यवहार जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी हासिल करन और मारा इलाका री निगरानी माई मदद मिलेला। प्रदेश री महिलावां ने गर्भाशय रा कैंसर री बीमारियों बचावन सारू चलाया जा रहा टीका लगावन रा अभियान रा तहत कोटपुतली बहरोड़ जिला रा मेड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माथे हाल ताई 65 टाबरियां रा टीका लगा दिया गया है। अहलकारा ने मुजब गांवाई हलका माए स्वास्थ्य विभाग रे टीमा लगातार काम कर रही है। इनु 32 तादाद माए टाबरियां रे टीका लगाया जा रहा है। जयपुर जिला माए हर महीना री 5 और 20 तारीख ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरा रा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियां री ओर सवारे 8-9 बजे ताई ग्राम पंचायत और सरकारी स्कूलों माए खास शिविर लगाया जावेला। आम आए जनता ने योग प्राणायाम और कसरत रो अभ्यास करायो जावेला। इस आगे ANM और आशा कार्यकर्ताओं की मदद मौसमी बीमारियों बचाव सही खान पान और साफ सफाई रा बारा माए जानकारी दी जावेला। अरब मौसम प्रदेश माए पाकिस्तान नु लागती सरहद कने रा हल्का शेखावाटी हल्का और कोटा संभाग माए जबरदस्त लू बाज रही है। आ हल्का माए पारो 45 डिग्री सेल्सियस ने पार कर क्यों है। मौसम विभाग ने मुजब 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान सागर चित्तौड़गढ़ सब 19 ठौड़ रहो। इरे अलावा श्री गंगानगर माए 45.9 अलवर माए 45.8 और पिलानी माए 45.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। राजधानी जयपुर माए आज पारो 43.2 डिग्री सेल्सियस ताई पूग कियो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधे श्याम शर्मा बतायो कि आता एक सप्ताह माए तजरा आतुई हल्का माए सरहद कने तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस बीच रहवन रा आसार है। वे बतायो कि आवता 3-4 दिन ताई प्रदेश रा कुछ हल्का माए आंधी चालन री संभावना है।
2: आगामी एक सप्ताह के दौरान अभी भी मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस के बीच जारी रहेगा। यानी वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और दक्षिण पूर्वी भागों में यानी कोटा संभाग और भरतपुर में भी दिखेंगे तो कहीं कहीं तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा अगले 3-4 दिन तेज धूल भरी हवाओं का भी प्रभाव राज्य के कुछ भागों में रहेगा। इस दौरान 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं भी रिपोर्ट हो सकती है।
0: तेज गर्मी और लू ने ध्यान रखता थका प्रदेश का सगला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र माए खास इंतजाम करी चिया है। अस्पताल माए मरीजा सारू बिस्तर रखने सा गई ORS कॉर्नर ही बनाई चिया है। इस आगे जनता ने गर्मियों बचाव रे बारा माए जानकारी दी जा रही है। न्यारी न्यारी थोड़ा सड़का माथे पानी रो छिड़काव करावन सागे लोगों दोपहर री बगत जरूरी फेवन री सूरत माई बाहर जावन री अरज करी जा रही है। IPL क्रिकेट होड रा तेत आज जयपुर रा सवाई मानसिंह स्टेडियम माई राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स बीच मुकाबलो फैला। वो मैच अब थोड़ी देर पछे 7:30 बजे शुरू फैला। अंक तालिका माए फिलहाल 5वां नंबर री टीम राजस्थान रॉयल्स ने प्ले ऑफ दौर माइपू गणसारू।

0: मैच जीतनो जरूरी है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स अंक तालिका माए आखिरी छोड़ माथे है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी कहो राज्य सरकार री साफ नीतियां राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स रा खास केंद्र राता और ऊंसा में आ रहे है। सुप्रीम कोर्ट टीका लगायोड़ा या नसबंदी करोड़ा लावारिस कुत्ता ने आश्रय सलामाय राखन रा पहली रा हुकम ने पाछो लेवन नट्यो। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ने पर्यावरण अनुकूल बनावन सारो ई साल अगस्त महीना ताई 500 ई बसा चलाई जावेला। राज्य राखनखर हल्का में जबरदस्त गर्मी और लू रो असर। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

0: सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार मिलता है हरिया को। हरिया आप सबको बताएंगे अपनी सफलता का राह।
1: मेरे किसान भाइयों और बहनों, आप भी अपने खेतों में उन्नत फसल उगा सकते हैं।
2: वो कैसे?
1: बस जब भी कोई समस्या हो तो तुरंत मिलाइए ये नंबर 1800-1850-1।
3: ये किसका नंबर है भाई?
1: किसान कॉल सेंटर का, जहाँ विशेषज्ञ आपको खेती की समस्याओं का हल देंगे तुरंत।
4: अरे भाई, विशेषज्ञ हर समय थोड़ा ही बैठा मिलेगा।
1: बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई, साल के 365 दिन मिलेगा, वो भी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक।
3: पर भैया, लंबी बात करेंगे तो पैसे बहुत लगेंगे।
1: कोई पैसे नहीं, मोबाइल से या दूसरे फोन से किसान कॉल सेंटर मुफ्त कॉल करो, सदा के भी पैसे नहीं।
5: सर
1: 16 आदेश।
6: किसान भाई, खेती की समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1850-1 पर मुफ्त संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
7: हे भगवान, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ?
8: किस बात की चिंता है भाभी?
7: खेती की ही चिंता है भैया, मुन्नी के बापू जिंदा होते तो सब संभाल लेते।
8: हाँ ठीक कहती हो तुम।
7: अब हम अकेले क्या करें भैया?
8: भाभी चिंता मत करो, अब भी एक सच्चा मददगार हम किसानों के साथ है।
7: अरे भैया बताओ ना कौन?
8: भाभी तुम किसान कॉल सेंटर फोन मिलाओ, वहाँ से तुम्हें उन्नत खेती के लिए हर सलाह मिलेगी।
7: जैसे?
8: जैसे बीज, खाद या कीटनाशक के इस्तेमाल और मौसम के मिजाज के बारे में पूछो और जानो।
7: सच कहते हो भैया?
8: हाँ, वहाँ से तुम्हें कृषि विशेषज्ञों की राय मिलेगी एकदम मुफ्त, और भाभी वहाँ फोन करने के पैसे भी नहीं लगते।
7: वहाँ फोन कब करें भैया?
8: हफ्ते के 7 दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक, कभी भी मोबाइल से या दूसरे फोन से, और वहाँ तुम अपनी ही भाषा में बात कर सकती हो।
7: पर भैया,
8: सोचो मत भाभी, किसान कॉल सेंटर तुरंत फोन मिलाओ।
9: कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित किसान कॉल सेंटर का मुफ्त नंबर 1800-1850-1।
10: तो सगला सुनला भाइनो सूर्य भाई दा घना घना राम राम। तो देखो बेड़ो, आज मंगलवार है, फोन इन कार्यक्रम है, पधारुड़ा है आप और विकास कुमार जी सांकला, सहायक कृषि अधिकारी कृषि विभाग जैसे बातचीत कर सो। गर्मियों रे महीनों आप और खेत्र में की काम करूँ यार, बीजे में देखो क्या मैं खेत वाला काम तो है ही जाए, सुबह शाम थोड़ा गर्मी रो भी ध्यान रखू अपन वे साथ ही साथ रहे महीनो आगन जो आवन वाली फसल है खरीफ री उरी भी अपन होना था को विचार भी जो करना पड़ से थोड़ा बहुत क्या घरे भी थोड़ा फोन माथे पर बातचीत कर सको तो कि ये भी चीज जो को कर ले सो की कर सो की नहीं है बीजो उपचार को करे क्या कई चीजें हैं आजकल तो समझ को है विज्ञान युग है तो वे हिसाब से अपन काम करना है। तो विकास जी आप बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो विकास जी के आप आज

0: कार्यक्रम में देखो गया गर्मी तो सागरी पड़े पड़ी है। तो जो को भी पहला भाईड़ा जो खेतों में बैठा है वो ना पहले तो क्या पहलो सुख निरोगी काया। आप ध्यान नाखे गर्मी में, टाबरों और ध्यान नाखे, पशुधन और ध्यान नाखे, और उरे साथ साथ ये टाइम रे मिनो खेतों और मिनो की कम सुबह शाम कर सके, ताकि की है गांव नाल टाइम रे मिनो थोड़ो भार तो माथे नहीं पड़े। तो ऐसे गर्मियों में आप खेत में बैठ रहा की करे
1: कि किसान भाई, राम राम। सबसे पहले अपने ना सबसे पहले जो अपने फसलें काट ली हैं उनके अवशेष अपने पड़े रहते हैं, बहुत से किसान भाई जला देते हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जैसे उससे फसल अवशेष पड़े हुए हैं, क्योंकि किसान पशु पक्षी मर जाते हैं और किसान आगजनी का प्रकोप हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले किसान भाइयों का क्या करना है, अपने जो बचे अवशेष हैं या तो पानी डाल के उनको गला दो और उसमें अपने क्या हल चला दो, जिससे अपने फसल के अवशेष गल जाएंगे और वही अपने एक आने वाले समय में नए खाद के रूप में काम नए खाद के रूप में काम आ सकते हैं। इससे इससे अच्छा है कि अपने पूसा वेस्ट डिकम्पोजर नाम के 10 रुपये की 50 रुपये की शीशी आती है मार्केट में, बस पूसा वेस्ट डिकम्पोजर लाना है। वो उस वेस्ट डिकम्पोजर को अपने जो जो फसल का अवशेष है उस पर एक क्विंटल के लिए एक चीज़ पर्याप्त, उसको 10 दिन रख दोगे तो वो जो फसल का अवशेष बचा हुआ है वो जल्द के खाक हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। वो उसको अपने उसको अपन डायरेक्ट खेत में मिला देते हैं तो उससे भी अपना क्या होता है वो एक अच्छा उर्वरक के रूप में काम आता है। और इसी इसी इसी इसके साथ ही कोई इसी इसके साथ ही आपको इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो वेस्ट डिकम्पोजर यूज कर रहे हैं वो बच्चों के हाथ में नहीं आए, अपने पशुधन के पशुधन के पास नहीं आए। पशुधन पास में आएगा, पशुधन के पास में आ जाएगा तो पशुधन के जानवर खतरा होता है, बच्चे अनजान होते हैं खा के मुँह में ले लें, उससे भी नुकसान होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो अभी उसका वेस्ट उसकी खाली बोतल है उनको अपने जलाना नहीं है, उनको या तो घरे का डिम का गाड़ दें या फिर ऐसी ऐसी जगह रखें जो बच्चों के पशु बच्चों के पशुओं के हाथ में नहीं आए, जिससे उनका जानवर नुकसान नहीं हो।
0: बहुत ही बढ़िया। देखो विकास जी सही बात है कि जो कि पराली बिजी है ये ना सही तरीके से निस्तारण करना जरूरी, क्योंकि पर्यावरण भी आप ध्यान दे। और गर्मी के मौसम में अगर आग लगा सो तो पछे ताबे आवे को नहीं आग हणो। कई बार देखो एक किस्सा हुई बड़ा खेतों बीजों में थोड़ा थोड़ा ध्यान भी रखना, और उसके बाद में जो दवाई भी छिड़को वीरो भी ध्यान रखना है, ताकि कोई भी पर जीव जंतु या भाई अपने चपेट में नहीं आवे। बिल्कुल सही बात है। बीजे में विकास जी देखो आजकल तो पराली बीजी है ये से तो कई प्रकार का कोयला बीजा ने बढ़ावी है, कई मशीन हो जाए
1: ऐसी ऐसी मशीनें भी वर्तमान में है, जैसे अपने इस पराली पराली के जो अपने फसल के अवशेष होते हैं पराली के अपने आम भाषा में जानते हैं, इस इनका उपयोग अपने ईंट भट्टों में देखते हैं और इन ईंट भट्टों वाले भी ले जाते हैं अपने क्या बोलते हैं चचारी के रूप में भी काम आ जाता है। लेकिन इससे अच्छा यदि आपको लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा अवशेष मात्रा में तो आप फसल भट्टों में ईटिया भट्टों में दो, यदि आपके पास बहुत कम मात्रा में है तो इससे सबसे अच्छा यही उपचार है कि आप वेस्ट डिकम्पोजर का यूज करके उसको काम में लो।
0: बिल्कुल। देखो विकास जी के कहने मतलब है कि ओम रोम गुटली और दम, यानी कि कहने मतलब है थोड़ी सी संपर्क साधनों पर से तो ईंट भट्टों वाला भी अपन पैसा दे सके। तो ये वास्ते जो को भी भाई सुन रहा है ये रो देखो कि आप जो को पराली बीजी है ये रो निस्तारण है जो को सही तरीके से करो, और वो रो अपनों की लाभ भी मिले और पर्यावरण भी बचे रहे और आस पड़ोस में नुकसान भी नहीं हुए। बीच में देखो कि विकास ये समय जो को है गर्मी है ये में कई बार लोग बाग जुताई गहरी जुताई बीजी करे, तो भूमि जो को जुताई है वो सब की लाभ है करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो पैसा तो लग ही जुताई कर सो तो ट्रैक्टर पैसा लाग से ट्रैक्टर में तेल बल से, तो ये की लाभ है कई बार करें तो की लाभ है करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए मोहरबाइन होता।
1: किसान भाई वो देखो अपने अपना आने वाले में जैसे मेरे जैसा जैसे मैंने देखा गया है वो किसान भाई जायद की फसलें बहुत कम जायद की फसलों के लिए चतारा ही मुख्यतः काम लेते हैं, और आधे ज़्यादा खेत में भोजा खेत हो कि किसान एक से ज़्यादा एक हेक्टेयर ज़्यादा खेत पड़े रहते हैं। उससे अच्छा ये है कि जब अपने फसलें खरीफ फसलें काट ली फसल का अवशेष प्रबंधन कर लिया अपने को क्या करना है जो अब चीजल पलाव होता है डिस्क पलाव होता है डिस्क हेयर होता है उससे आप गर्मियों गहरी जुताई कर दो। गहरी जुताई से क्या होगा उसमें कीड़े हैं वाइट क्रब है इल्ली है दीमक है दीवर है इनके कीटाणु अंडाणु बीज वो होते हैं वो मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने देखा गया 44 अभी हाल फिलहाल में 44 43 44 45 ਕਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ।

0: और आने जाने तो 40-50 के आसपास भी टेम्परेचर जाता है। और ये और इससे आप गहरी जुताई करोगे तो अपने मित्र पक्षी होते हैं, जैसे व्हाइट क्रेन होता है, सारस होता है, वक होता है, वो अपने किसके साथ हल्के पे चलते हैं, वो यदि किसानी तो वो भी खा जाते हैं अपने, जैसे अपने क्या बोलते हैं, हाँ घास भी जल जाती है इससे, और इसी इनको इनको या इनके वो अपने घास जल जाती है, और इनके जो घास के को पड़े हुए ना क्या बोलते हैं अपने इस मतलब घास के पड़े हुए तंतु वो मिल जाएंगे, और उनका एक आपने उसका एक वेस्ट के रूप में वो अपने खाद के रूप में काम आ जाएगी।
1: बाकी बढ़िया बात है। देखो कि बड़े हो के हर चीज जो आज समय में अपन को कर लाभ ले सको, निस्तारण को कर सको, गहरी जुताई का लाभ किए, और आज उस समय जो कोई विज्ञान हुए वैज्ञानिक तरीके से कर सको हर चीज अपन लाभ मिल सके। गहरी जुताई कर सको विकास जी बताए हुए कि कई प्रकार की जमीन में जो को जीव भी परजीवी भी बीजा भी जो को कोमरा नहीं भी वो नो एक बीज नो एक जो निपटा तो रही बीजे में। एक देखो के विकास जी अपन एक दीमक उदय भी बहुत बड़ी मोटी समस्या है, कई रा कई पेड़ सूख जावे कर दे, तो ये में गहरी जुताई या गर्मियों में ईश निजात को कर सके।
0: घर जो है दिमक में मुख्य कीट होता माता कीट। माता कीट अपने जो जो अपने खेत के मेड़ों के पास पेड़ों के पास रहता है, उसे घरी जुताई करोगे तो माता कीट मर जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तापमान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा वो मिल जाता है। और इसके साथ यदि उसके इसकी इसके अलावा यदि आपने किसान यदि खड़ी फसल है तो हम जो बाजरे फसल लगा रखी है उसमें दीदीमा का प्रकोप है, तो सबसे पहले क्या करना है अपने सिंचाई यदि 5 बार सिंचाई करते हैं 2 बार सिंचाई करते हैं, और थोड़े थोड़े अंतराल में यदि आप 2 घंटे चलाते हो तो आधे घंटे ही पानी चलाए, इससे क्या होता है वो दीमक उपड़ने नहीं आती और जो खड़ी फसल बच जाती है। यदि खड़ी फसलों में यदि रासायनिक में प्रयोग करना है तो क्लोरोपाइरीफॉस 20 का कुको का ड्रेंचिंग कर देंगे, मिट्टी मिला देंगे, तो उससे वो मर दिमाग मर जाएगी। इसके अलावा नीम का तेल का अपने उपयोग करें तो नीम का तेल पानी में घोल के उसका उपयोग करें मिट्टी पर छिड़के तो उससे भी एक दिमाग का नुकसान बच जाता है। और इससे इसके अलावा ही वो एक घरेलू उपचार चाहिए तो अपने को अपने यहाँ पे जैसे में क्या होता है आज गन्ने गन्ने वाले घूमते रहते हैं तो उनका वो जो वेस्ट होता है जो वो कुछ कुछ काम नहीं आता उनके, वो गन्ने वाला वेस्ट लेके अपने को मटके लेने मटके में छेद करना है और उस वो करने का जो चूरा है उसको डालना है उसमें क्या बोलते हैं उस मटके में डाल देना है, मटके 15 सेंटीमीटर नीचे मिट्टी में जलाते हैं, मिट्टी में डाल दो और उस मिट्टी से डटक देना है, 15 मिट्टी में डाल दो तो क्यों जब दीमक रहती है 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे, 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे तो वो गन्ने से आकर्षित होती है, गन्ने से आकर्षित होती है वो जो मिट्टी का मटके उनमें जाके बैठ जाएगी, मिट्टी के उसमें बैठ जाएगी तो 10 उनको 15 दिन के बाद उस मटकों निकाल के ऐसे खेत की मेड़ के बाहर गिर गिरा दे, और जो वो खेत की बाहर मेड़ के बाहर गिर गिरा दोगे तो मिट्टी दिमाग उच्च तापमान में मर जाएगी और अपन एक घरेलू तरीके से उसका उपचार घरेलू तरीके से उससे उसका बचाव भी हो जाएगा।
1: देखो बैठो के दीमक की सबसे मोटी समस्या पर बहुत ज्यादा है और हरियाणा तो घनी देखने को मिले पर दरखत दरखत खाए जावे, तो ये वास्ते विकास जी आपने बताई है चीज, और फिर भी अगर कोई है तो आप हर गौर में कृषि प्रयोगशाला बढ़ाए और कृषि विभाग महकमा भी है बीजे में समय समय माथे नवाचार होता रहे काजरी आड़ा सो कृषि विज्ञान केंद्र से वो संपर्क करता रहो और नई नई जानकारी लेता रहो ताकि आप जो को दीमक सो आप छुटकारा मिल सके। और जो को भी भाई सुन रहे हैं वो अगर कोई आप सवाल जवाब है जो करना चाहे तो आज अपना जो कोई दूरभाष नंबर है वो थोड़ा बताए दो 02992254202 में सीधी बात कर और विकास जी बता रहे यहाँ सो सीधी आप ही कोई भी बातचीत कर सके। विकास जी देखो क्या गर्मी रो समय है खेतों में बैठा है और सुबह शाम को थोड़ा बहुत काम करना पड़े, ये समय रमीनो अगर देखो घड़ा सीख तो भाई मिट्टी पानी जांच करा ली, अगर कोई भाई कराना चाहो तो इस समय उम्र वास्ते उपयुक्त है कौन करे कि यार मिट्टी पानी जांच कितने कितने समय में करानी चाहिए और मिट्टी पानी जांच हो हमारे किसान भाई वास्ते की लाभदायक
0: सके। किसान भाई देखो सबसे पहले तो अपने यदि खड़ी फसल काट लिया और अपने गहरी जुताई कर ली लेकिन फिर भी अपने जमीन में अपने मिट्टी को 17 उर्वरकों की 17 न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, जिसमें ये जो अपने एनपीके जानते हैं, नाइट्रोजन पोटास पोटेशियम जानते हैं, और और कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक।

0: क्या करना है, सबसे पहले 15 सेंटीमीटर का गड्ढा करना है, ऊपर वाली 3 सेंटीमीटर मिट्टी को हटा देना है, और बाकी बची मिट्टी को अपने एक थैली में इकट्ठा करना है। एक थैली में इकट्ठा करने के बाद उसको मिक्स कर लेना, अच्छे से मिला लेना। मिलाने के बाद क्या करना है, उसको उसके 4 बाग करने, 2 बाग आमने सामने, 2 बाग हटाने, 2 बाग रखने। ऐसा करते हुए आधे किलो मिट्टी अपने को रखनी है, आधे किलो मिट्टी रखने को उसको एक पॉलीथीन थैली बांधना है, अपने जो पॉलीथीन थैली या जूट की थैली बांधना है, उस पर आपका किसान नंबर, किसान का नाम, पिताजी का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर लिख के अपने मिट्टी परीक्षण जो आप समय पर मिट्टी परीक्षण है उसमें जमा कराना है। और पानी की जांच करनी, पानी की जांच के लिए क्या ट्यूबवेल को चालू करना है, जो आपका पानी है तो उसको रखना है, चलते हुए पानी में से एक बोतल पानी भर के जमा करना है। इसके लिए मिट्टी प्रयोगशाला शाला में पानी की जांच के लिए 5 रुपये शुल्क लगता है, और पानी की जांच के लिए 5 रुपये शुल्क लगता है। आपको यह प्रयोगशाला पानी की जांच के लिए आपकी रिपोर्ट 10 मिनट में मिल जाती है, और मिट्टी की जांच की रिपोर्ट आने के लिए 3 दिन का समय लगता है। और ये एक मिट्टी पानी जांच की तीन तीन सीजन ले लो। यदि आपने इस सीजन में कराई, खरीफ रबी खरीफ तक वैलिड है, और आपको आने वाले समय में आपको रबी में आपको मिट्टी की जांच करवानी है।
1: बहुत ही बढ़िया है। देखो भाई डों के मिट्टी पानी की जांच जो आप और अपने शरीर को ध्यान रखो, जो किसान भाई आप रे खेत की मिट्टी रो मृदा रो स्वास्थ्य ध्यान रखे, तो ये वास्ते की है कि अपन ये चीज थोड़ा विशेष ध्यान देना, क्योंकि देखो सब दारो मदार चुको है वो ये माथे जे, तो ये वास्ते अपन मिट्टी पानी जांच है इस समय उपयुक्त है, और ये समय में मिट्टी पानी जो बीजे एक विकास मिट्टी पानी जांच अगर आप करा हुई तो ये ना कि पाछी कोई भी करानी पड़े कुछ समय भी जो है ये रो
0: अपने वो मिट्टी पानी जांच 3 सीजन यदि आज खरीफ सीजन में करा लिए तो इसका खरीफ सीजन में, अगले बार रबी सीजन में नहीं करवानी, आने वाले खरीफ सीजन में इसके आगे का जो रबी सीजन उसमें करवानी है। और इसकी मिट्टी जांच के बाद 3 दिन बाद सोयल हेल्थ कार्ड मिलता है, जो मिट्टी पानी जांच करते हैं उसमें आपको यूरिया कितना डालना है, गोबर कितना डालना है, DAP कितना डालना है, और कैल्शियम के लिए कितना डालना है, मैग्नीशियम के लिए कितना डालना है, जिंक के लिए कौन कौन से उर्वरक कितने मात्रा में डालने वो आपको बता देते हैं। जिंक की जरूरत है आपने, और जिंक सल्फेट की जरूरत है, कौन सी कितनी मात्रा में जरूरत है वो एक आपने एक तरह अपने खून की जांच होती है उसी टाइप की मर्मदा की जांच होती है। इसके लिए आप
1: बिल्कुल बीजिंग देखो के आप तो बात कर रहे हो ये समय में कृषि यंत्र रो जो को है वो और कोई कम है अपन करे तो ये समय में कही है गर्मी यहाँ पर बहुत तेज बढ़ी, तो कृषि यंत्र बेचारो की विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि खराब नहीं है।
0: कृषि यंत्रों के रख रखाव के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप लोग छायादार जगह रखे जाए तो जहाँ पे उसको डायरेक्ट मतलब तापमान सूर्य की किरणें नहीं मिलती हो, सूर्य के और उससे बरसात से बचाना, और जो यदि कृषि यंत्र काम ले लिया कृषि यंत्र काम ले लेते समय उसमें खरपतवार लग जाते हैं, मिट्टी लग जाती है तो वो उसको गला सकती है, इसलिए वो गला सकती है, वो उससे बचाव के लिए उनको खुरच के अच्छे सफाई कर लें, और कोई जहाँ आप ग्रीस पानी की जरूरत है ग्रीस पानी कर लें, तो उसको अच्छे से पानी से धोके रख लें, और यदि कोई उसमें फसल के अवशेष लगे हो तो उनको हटा दीजिए जिससे उनके लड़ाई पड़े।
1: तो देखो बैठो के ये टाइम महीनों की गर्मी बहुत ज्यादा पड़िया करे, और जो को अपना कृषि का यंत्र है जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर तो बड़े आप चला होता रिटोली है या जो को अपना हेरा है या थ्रेसर बीजा है, ये में की है कि गर्मी और महीनों औंधी चले औंधी महीने ये पुर्जा भरी जावे, बीजे महीने में जो को खाडा खोच रहे कई बार बिस्वर बैठ जावे, तो ये वास्ते थोड़ा विशेष ध्यान रखना अपना विकास जी एज के रहा है कि ये गर्मी और जो भी मिणा है ये मैं आप थोड़ा कृषि यंत्र और विशेष ध्यान रखना है ताकि की है कि आप गर्मी से कृषि यंत्र बच्चू रहे। विकास जी एक बात और भी है कि आप जो बातचीत कर रहे हो फसल जो है खरीफ री, तो हणा सो आप की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि देखो समय तो घड़ो ही पड़े हुए, फिर भी आज जो समय है तो जो बीज उपचार की बात करो तो बीज आप कितना टाइम पहले खरीद सको रख सको बीजोपचार कितना पहले कर सको।
0: अभी आने वाले से अभी जायद का सीजन चल रहा है, जो जैसलमेर में मुख्य तो बाजरे की फसल जायद के रूप में होती है, और अब जो आने वाले समय में कपास की फसल और मूंगफली फसल के लगेगी इस मार्च के।

0: मई के अंतिम पखवाड़े में और जो जून के प्रथम पखवाड़े से मार्च की उसके मूंगफली की और कपास की फसल की बुआई चालू हो जाती है। उसके लिए सबसे अच्छा अच्छा है कि अपने कपास के लिए किस्मों का चयन करना है। किस्मों की राजस्थान से निकली, राजस्थान की बीकानेर यूनिवर्सिटी निकली हुई है, मरुप्याज की किस्म है, बीकानी नरमा है, ये अच्छी अच्छी किस्में हैं। और कल्याण ये किस किस्में आप चयन कर सकते हैं। उसके लिए मूंगफली में कोई किसान भाई इतना अच्छी फसल लगाना चाहता है तो फूले वर्षा है, JL2 है, TG1 है, CO2 है, गिरनार है, मल्लिका है, ये अच्छी किस्में हैं, इनका आप चयन कर सकते हो। सबसे इसके अलावा यह है कि आप सबसे बड़ा जो लगा लिया है आपने लगा लिया तो एक उन्नत कृषि यंत्र से आपने उसको बुआई करनी है। उन्नत कपास के लिए सीड कंफर्टिलाइजर ले के अच्छा क्या बोलते हैं उन्नत कृषि यंत्र उससे आप बुआई करनी है। किसान का यह ध्यान है प्रमाणित बिल नहीं उत्तराई डीलर से ही खरीदे, नकली बीज नहीं खरीदे, नकली उर्वरक नहीं खरीदे, क्योंकि आजकल जैसलमेर में बहुत सी जगह नकली और नकली बीज आती है। इसलिए आपको प्रमाणित बिल लोगे तो उससे अपने GST बिल लोगे, प्रमाणित मतलब बिल मतलब GST बिल लोगे तो आपको अच्छा अच्छी किस्म बिल मिलेगा। कोई समस्या आती है तो आप उसको शिकायत करके आपको राहत मिल सकती है।
1: देखो विकास जी, बात तो आपकी सही है कि आपने बिल भी जो तो सही ले लो, लेकिन कई बार क्यों या करे के जो बिल भी ले लियो, बीज भी खरीद लियो, बीज बुआई कर दी, फसल खड़ी होगी और वीर महीनों दोनों बढ़िया को नहीं आयो, पछे कई बार किसान और जो को दुकानदार है वो सो आपस में छोड़ दिया करे। तो ये समय महीनों जो को आप बीज लियो तो वीर जो को बैग होया करे जिकन आप किट को, तो ये ना भी संभाल रखो जो ये माते कोई तारीख कोई बीजी कोई जो क्या करे के अवधि पार या टाइम बार जो भी हो जो को भी हो या करे तो ये ना भी संभाल रखना चाहिए।
0: किस किसान भाई को सब चल जो भी आपने बीज लिखे उसे टेक आते हैं, पीला टेक होता है, लेकिन नीला टेक होता है, इनको टैक्स बोलते हैं। इन पे आपको कौन सी वैरायटी का कौन से बीज नंबर का उसको डेट ऑफ टेस्टिंग मीन फिजिकल प्योरिटी जेनेटिक प्योरिटी और उसके एक एक्सपायरी डेट तक लिखे तो उनको एक यदि आप जो बहुत ज़्यादा बोल रहे तो उसमें एक या दो टेक आप संभाल के उसमें पता चलता है। यदि आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हो या कभी आप उसको डीलर से गलत भी लिया तो उसकी शिकायत करनी हो तो आपको एक प्रमाणित उसका भी प्रमाणित बिल और ये टेक रखना जरूरी है जिससे आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करते हो तो आपको पता कि किसान को और आपको पता रहेगा कि कौन सा बिल आपने बीज लिया है कौन सा क्या लिया है।
1: तो बिल्कुल देखो भाई जो को भी सुन रहा हो क्योंकि सबसे मोटी चीज़ है कि जगह खेतरी मिट्टी री जांच हुई रे बाद में बीज बढ़िया, बीज बढ़िया नहीं हुए तो पछे मिट्टी रे जांच और बीज सही पड़े रहे। तो ये वास्ते लेवती टाइम जो विकास जी के ये बात और थोड़ा विशेष ध्यान ना किया और जो को भी सुन रहा है वो एक बार बढ़े अगर कोई और सवाल जवाब हुए तो सीधे फोन कर विकास जी बता रहे उनसे बातचीत कर आप सवाल जवाब ले सके। ये वास्ते पर दूरभाष नंबर है 0299225420 ई मैं सीधी बात कर और विकास जी से बातचीत कर सके। विकास जी देखो क्या आप जो को बातचीत तो कर रहा हूँ आज उसमें जो कोई विज्ञान में युग है, विज्ञान मतलब क्यों मतलब है कि किसान लोग के जाऊँ आओ नहीं जरता है कौन उस बैठोड़े हमें था उसको कोई बातचीत कर सके, व्हाट्सएप है, मोबाइल है, फोटो खींच भेज सके। तो आज जो को भी जितने भी योजनाओं थोड़े लागू हुई तो मोरो जो को किसान भाई है वो कृषि विभाग से जुड़ी उड़ रहे सीधे या काजरी से जुड़े रहे या केवी के से जुड़े रहे तो ये वास्ते आज जो को विज्ञान हो जो को युग है ये में जो को अभी आप सोशल मीडिया बात कर रहे तो कितनी लाभदायक है ये में किसानों ने कौकर जुड़ लो जुझे ये की लाभ है।
0: सबसे पहले आपको यदि किसान भाई आपने कोई भी समस्या है कि आपने फसल में कि किसी में कीड़ा लगा हुआ है रोग लगा हुआ उसके लिए भारत सरकार की NPSS ऐप NPSS ये अपने जो उसमें आप फोटो खींच पता चल जाता है कौन सी फसल है कौन सा रोग है क्या उपचार है। वो यदि उसमें आपको कोई समस्या आती है आपको पहले उपचार नहीं मिलता है रोग सही नहीं मिलता उसमें भी डायरेक्ट विशेषज्ञ संपर्क इसके लिए आप कृषि में किसान भाइयों के तो तरी समाधान के लिए भारत AI नाम की एक आपने AI टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं भारत AI नाम की आ चुकी है। उसमें आपको हर एक फसल के लिए हर एक फसल में कौन सी बीमारी लगती है कौन सी फसल लेनी चाहिए कौन सी उसकी उन्नत किस्म है कौन सा उसका टाइम लगाना है उसके लिए कितनी क्या जो भी रिक्वायरमेंट हो भारत AI से उसके लिए कृषि विभाग से आपको डायरेक्ट जो है तो राज्य किसान सुविधा है ऐप है राजस्थान साथी पोर्टल है, उसमें आप संपर्क करके कृषि विपणन विभाग, कृषि विभाग उद्या कृषि

0: उद्यानिकी विभाग और इस सहकारिता विभाग से और पशुपालन विभाग की योजना को जानने लगे तो उन्हें डायरेक्ट आवेदन भी कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको कम चलाने जानते हो और मित्रा के माध्यम आवेदन नहीं करना चाहते हो राजस्थान साथ पोर्टल उस पर जा राजस्थान.gov.in पोर्टल का वेब एड्रेस उसमें जाके आप आवेदन भी कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी आवेदन करना है तो किसान के बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जमाबंदी नक्शा जो सब नवीनतम हो साइंड हो तो वो जरूरी होता है। अब यदि आप इसके अलावा किसान के पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे उसका आधार कार्ड जना आधार बैंक की पास और योजना यो, यो, यो आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट भी लग सकते हैं जो कुछ योजना में आरसी लगती है ट्रैक्टर आरसी लगती है कि जो मिट्टी पानी जांच भी लगती है जो योजना के अनुसार ये बेसिक आपके कागज होना जरूरी है आखिर में किन योजना आवेदन करने के लिए।
1: तो देखो बैठा हो सरकारी तरफ से तो आप घनी सुविधाओं दी उड़े कहीं थोड़ी आप चढ़ी बीजी उठानी पड़ सी क्यों मतलब ये जानकारी रखनी पड़ सी। बीजे महीने देखो के मैं आप बात करी के विज्ञान में योग्यता पर जाना तो जरूरत है कोई सीधो मोबाइल से बात करी चीत करी की है कौ करे कड़ी योजना है। तो एक बात और भी है कि क्या जी फसल बीमा चुको है ए मारे किसानों वास्ते कितो लाभदायक है। मोदी जी भी मोहरा चुको है प्रधानमंत्री जी है वही घणो क्या करे कि फसल बीमा कराओ फसल बीमा तो फसल बीमे रो की लाभ है कौ करे। अब कई लोग भाई ये लागे कि फसल तो खराब हुई वही तो मुआवजो मिलियो को या पैसा कट गया। तो ये वास्ते जो को भी किसान भाई सुन रहा है तो फसल बीमा कराने के तो अपर वास्ते उचित है लाभदायक
0: फसल बीमा में सबसे पहले फसल बीमा का कब कराना है अपने करीब में 31 जुलाई से पहले और दिन रबी के लिए 31 दिसंबर से पहले आप फसल बीमा करवाना है। फसल बीमा कितनी राशि लिखती है तो 98 रुपये केंद्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से मिलती है। 2% आपको रबी के लिए देना है 1.5% खरीफ के लिए देना है 5% कमर्शियल क्रॉप है उनके लिए देना है। ये इसके अलावा कि फसल बीमा के लिए आप खुद यदि आप कैसे करवा रहे हो तो बैंक खुद से आपके फसल बीमा कर देता है। यदि खुद से आप लोन लो नहीं पा रहे आपको आप लोन नहीं रहे कैसे नहीं करवा रहे तो आप इमित्रा के माध्यम से या CSC या बैंक के माध्यम से और बीमा कंपनी के एजेंसी के लिए एजेंट के माध्यम से आवेदन कर सकते हो। उसके लिए आपको आपका कौन से जमाबंदी बैंक डायरी और अपने उसके कौन सी फसल बोरे के बुआई फसल बुआई पर पत्र चाहिए होता है। इसके आपको और यदि आप फसल और इस बीमा फसल बीमा कराते ध्यान रखना है कौन सी फसल बोरे कौन सी फसल कितने एरिया में बोरे के सही फसल बीमा लोन हो रहा है कि नहीं हो रहा है कौन सा सही फसल का बीमा हो रहा है कितने क्षेत्र का हो रहा है वो आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट उसका उसको संभाल रखना है। और इस राजस्थान में जैसलमेर जिले में एग्रीज इंश्योरेंस कंपनी काम है जिसका टोल फ्री नंबर है 1800-181-1951 इस पर आप संपर्क करेंगे। यदि कोई आपको पास नुकसान होता है फसल में कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप इस पर जाके जानकारी ले सकते हो।
1: बिल्कुल विकास जी देखो कई बार मोर किसान भाई वे हो कि एक सूचना बराबर दे को नहीं और बायडो तो वे मूंगफली और फसल कोई पुरानी बीजी लिखोड़ी भी तो कई बार बीमे रमीनो क्लेम रमीनो खराब है बीजे में। तो ये वास्ते जो को भी भाई सुन रहे हैं विकास जी ये बात करी है कि जो को थोड़ी फसल बाड़ी है वो जाए बैंक रमीनो फॉर्म भर और बताओ बैंक वालों को यार ये फसल बाड़ी तो उसी अनुसार बीमो से। तो विकास जी आज आप बता रहे हैं मोर भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।
2: सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार मिलता है हरिया को। हरिया आप सबको बताएंगे अपनी सफलता का राज।
3: मेरे किसान भाइयों और बहनों आप भी अपने खेतों में उन्नत फसल उगा सकते हैं।
4: वो कैसे?
3: बस जब भी कोई समस्या हो तो तुरंत दिलाइए ये नंबर 1800-1800-1551।
5: ये किसका नंबर है भाई?
3: किसान कॉल सेंटर का। यहाँ विशेषज्ञ आपको खेती की समस्याओं का हल देंगे तुरंत।
6: अरे भाई विशेषज्ञ हर समय थोड़ा ही बैठा मिलेगा?
3: बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई, साल के 365 दिन मिलेगा, वो भी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक।
5: पर भैया लंबी बात करेंगे तो पैसे बहुत लगेंगे।
3: कोई पैसे नहीं, मोबाइल से या दूसरे फोन से किसान कॉल सेंटर मुफ्त कॉल करो, सलाह के भी पैसे नहीं।
7: सर
3: 16 आदेश।
8: किसान भाई खेती की समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर मुफ्त संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
9: हे
4: भगवान, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ?
8: किस बात की चिंता है भाभी?
4: खेती की ही चिंता है भैया, मुन्नी के बाप को जिंदा होते तो सब संभाल लेते।
8: हाँ।

0: ये कहती हो तुम?
1: अब हम अकेले क्या करें भैया?
0: भाभी चिंता मत करो, अब भी एक सच्चा मददगार हम किसानों के साथ है।
1: अरे भैया बताओ ना कौन?
0: भाभी तुम किसान कॉल सेंटर फोन मिलाओ, वहाँ से तुम्हें उन्नत खेती के लिए हर सलाह मिलेगी।
1: जैसे?
0: जैसे बीज, खाद या कीटनाशक के इस्तेमाल और मौसम के मिजाज के बारे में पूछो और जानो।
1: सच कहते हो भैया?
0: हाँ, वहाँ से तुम्हें कृषि विशेषज्ञों की राय मिलेगी एकदम मुफ्त, और भाभी वहाँ फोन करने के पैसे भी नहीं लगते।
1: वहाँ फोन कब करें भैया?
0: हफ्ते के सातों दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक, कभी भी मोबाइल से या दूसरे फोन से, और वहाँ तुम अपनी ही भाषा में बात कर सकती हो।
1: पर भैया
0: सोचो मत भाभी, किसान कॉल सेंटर तुरंत फोन मिलाओ।
2: कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित किसान कॉल सेंटर का मुफ्त नंबर 1800-180-1551।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।
4: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत।

एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था।

शान की आवाज में। अभी आपने सुना थ्री इडियट फिल्म के स्क्रिप्ट को। स्क्रिप्ट को लिखा स्वानंद किरकिरे ने और संगीत से सजाया शांतनु मोइत्रा ने।

1942 लव स्टोरी फिल्म के इस गीत को अभी आपने सुना कुमार शानू की आवाज में। इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत से सजाया आर डी बर्मन ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में अभी आपने सुना ऐतराज फिल्म के इस गीत को। इस गीत की धुन बनाई समीर ने और संगीत से सजाया हिमेश रेशमिया ने।

Vakt içerisi her trafik acaba nasıl bir karar ikaresi var.

अमिताभ बच्चन और अलका याग्निक की आवाज में अभी आपने सुना बागबान फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा समीर ने, संगीत से सजाया आदेश श्रीवास्तव ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला व आखिर गीत फिल्म बरसात से, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने, आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की।

0: अगर कोई मुझसे ये पूछे
1: क्या
0: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
1: क्यों
0: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
1: क्या

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे आबिदा परवीन की गाई एक चुनिंदा गजल को।

FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले समाचार संध्या, उसके पश्चात न्यूज़ एट 9, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मोनिका। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी के नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक $350 अरब का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें $100 अरब का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालतू

विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली NCR में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और KL राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। IPL क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Ashwani, and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade. Attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human lives. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern regions. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
4: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
3: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
4: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
3: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
4: आज हम सबने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
3: स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड एंड डेनमार्क reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order, and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour, after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital, Rome, later tonight. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
5: Talent and innovation exchange between India and Italy is expected to grow in the coming years. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit, which forms the final leg of his five-nation tour, Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said the trip would provide an important opportunity to address issues related to the mobility and welfare of the Indian community. Ms. Rao noted that the Migration and Mobility Agreement signed in 2023 is already operational between the two countries. She expressed optimism that the movement of Indian students, currently around 5,000 in Italy, as well as academicians and researchers, is likely to increase in the near future. She further highlighted trade, defense, mobility, maritime

चलते चलते फिल्म के इस गीत को अभी आपने सुना अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में। इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत से सजाया आदेश श्रीवास्तव ने। अगले गीत से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में अभी आपने सुना दिल तो पागल है फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया उत्तम सिंह ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे हजारी खान पार्टी के गाए लोकगीत।

धड़ी मात रे दसोदा महीरो बिलो मात सुना महीरो बिलो हाथी में मखन मोरी मनो सवेरे ओ पड़ी रे समरी नमे भूलू नहीं इतना घड़ी।

ਬੋਲੀ ਮਨੋ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਪੜੀ ਰੇ ਸਵਰੀ ਨੋ

किसने मारे हीरे दी वो दरी रे किसने तिनु तुला नहीं नहीं नहीं तुला धरी।

ho nari di kasanu tunu ni ni ni te ghari kasanam.

타고 너희나 떠나네 동안에 대하고 바살이 못 잃었던 민가가

Thank you.

ਜਿਸਨੇ ਮਾਰ

करूं। राधा तेरी यद कसुंदरी कन्हैयो तेरो कारो।

चरण में चंद्र है रे मथुरा रो गाढ़ो कारो कारो प्रभु मत कहो अरे कारो धग कोई सुधारो। तो कल कट सही चली गुजरी रे मथुरा जुड़ो काम है गोकल गट से चली गुजरी मथुरा जन रो काम मार्ग बिच में झगड़ो भयो अर मोगे महीनों दे दाम।

अरे जागो दी नंद जालू जागो दी नंद जालू जी तुम सोरन वाला गरही तुम जागो कौन के कलवा धन थू

राम किसी नहीं प्रभु मारे नहीं तो पापी नहीं राम। आ अरे राम।

श्रोताओं, हजारी खान पार्टी के गाए इसी लोकगीत के साथ राजस्थानी लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 101.8 MHz पर ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शाम ए गजल, जिसमें आज आप सुनेंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गायी कुछ चुनिंदा गजलों को।

श्रोताओं, मिताली सिंह की गाई इसी गजल के साथ सुगम शाम गजल का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। FM बैंड 101.8 MHz पर ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

शीशे चुभते हैं आंखों में। अब मुझे गाना एक आंचल मैंने अपने हाथों में, अब टूटे सपनों के शीशे चुभते हैं आंखों में।

सोनू निगम की आवाज में अभी आपने सुना दिल चाहता है फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत से सजाया शंकर एहसान लॉय ने।

0: क्या तुम मेरे इन सब सवालों का कुछ तो जवाब दोगी ना।
1: हरिहरन कविता कृष्णमूर्ति और कृष्णा की आवाज में अभी आपने सुना हम दिल दे चुके सनम फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा महबूब ने, संगीत से सजाया इस्माइल दरबार ने।

दिल से फिल्म के इस गीत को अभी आपने सुना उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाज में। इस गीत को लिखा गुलजार ने, संगीत से सजाया ए आर रहमान ने।

जाता है। चाहत की बात ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। दिल दीवाना तू ना आना, दिल की बातों में सोच ले।

आनंद राज, आनंद की आवाज में अभी आपने सुना हद कर दिया आपने फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया आनंद राज आनंद ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला व आखिरी गीत फिल्म गदर से, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया है उत्तम सिंह ने, आवाजें हैं उदित नारायण और प्रीति उत्तम की।

श्रोताओं, गदर फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 101.8 MHz पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलू पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली NCR में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेडियो।
1: हम आकाशवाणी
4: India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत के रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्था में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
4: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital Rome later tonight. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examinations for admission to undergraduate medical education to be held on 21st of next month. Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the earlier examination process must be comprehensively addressed and eliminated. The minister emphasized that re-examination must be conducted in a secure, seamless and foolproof manner under stringent security protocols. During the meeting, directions were issued to hold coordination meetings with district magistrates and superintendents of police across state to ensure robust monitoring and effective implementation of examination arrangements. The Supreme Court today for the first time allowed euthanasia for rabid, incurably ill or demonstrably dangerous stray dogs, citing the need to protect human life and public safety. The Apex Court issued a series of directions aimed at addressing the growing stray dog population across the country. The order came in a Suo Motu case initiated on 28th of July last year, following media reports highlighting incidents of stray dog bites and rabies cases, especially among children in the national capital. Meanwhile, the top court dismissed pleas seeking a recall of its earlier order on the relocation and sterilization of stray canines. The Kremlin today confirmed that Russian President Vladimir Putin will attend the BRICS summit scheduled to be held in September this year in New Delhi under India's chairmanship. The Russian embassy in South Africa, in a social media post, cited an aide to President Putin, Yuri Ushakov, as saying that the Russian president will attend the summit on 12th and 13th of September. Defense Minister Rajnath Singh reached Seoul today on a three-day official visit to South Korea after concluding his Vietnam tour. In South Korea, Defense Minister Singh will hold bilateral talks with his counterpart, Aung Kyaw Pak. The IMD has warned of severe heatwave conditions in North India over the next few days. The weather agency forecasts heavy rainfall in southern region. The IMD has issued a red alert for warm night conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till Thursday. The weather agency has forecast heat wave to severe heat wave conditions over Delhi, Punjab, Haryana and Chandigarh for tomorrow. And with that, we end this news bulletin.
5: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 11:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।